ईश्वर कहते हैं, मैं तेरे मन के आंगन में कहां आऊं, उसमें तो तूने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बिठा रखा है। क्या तू ये गंदगी भरा आसन ही मुझे देगा, जिसके कारण इस मन को निर्मलता और पवनता हासिल होगी। इस साधन इस विधि को अगर तू अपना लेगा तो ज्ञान का उजाला तेरे जीवन में आ जाएगा।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 11। आज का कार्यक्रम आधारित है बॉलीवुड की मशहूर गायिका गीता दत्त पर, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। पेशिया कार्यक्रम सुनहरे पल। जब कोई आवाज दिल की तार छू जाए, एक ऐसी ही आवाज थी गीता दत्त। नाजुक सी लेकिन अंदर से एक तूफान, रोम रोम में मस्ती लेकिन आंखों में कहीं उदासी। वो सिर्फ गाती नहीं थी, जज्बात को आवाज देती थी। छेड़ती थी तो चीख भी खुश हो जाए, और गुनगुनाती तो दर्द भी मुस्कुराए। चाहे वो तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे, हो या वक्त ने किया क्या हसीन सितम। गीता जी के सुरों ने हर जज्बे को छूना था। आइए उन्हीं सुरों के सफर पर, जहां एक आवाज थी जो खुद एक दास्तान थी। ये है गीता दत्त के गीतों का जादू, एक सुनहरे पल।

गीता घोष राय चौधरी 10 बच्चों में से एक थी। उनका जन्म इदलपुर नामक गांव में एक अमीर जमींदार परिवार में हुआ था, जो अब बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में आता है। अपने जमाने की मशहूर गायिका गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर 1930 को फरीदपुर में हुआ। बेहद खूबसूरत और सुरीली आवाज की धनी गीता दत्त फरीदपुर के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। गायिका का पूरा परिवार 40 के दशक में कोलकाता आ गया और फिर वो सब मुंबई चले गए। गीता दत्त का संगीत में रिश्ता बचपन में ही जुड़ गया था। उनकी माँ अमय देवी एक कवयित्री थी और उनके पिता मुकुल राय संगीतकार थे। इसी वजह से संगीत के साथ उनका परिचय काफी कम उम्र में हो गया था।

बचपन के दिनों से ही गीता दत्त का रुझान संगीत की ओर था और वो पार्श्व गायिका बनना चाहती थी। गीता दत्त ने अपनी संगीत की प्रारंभिक शिक्षा हनुमान प्रसाद से हासिल की। गीता दत्त को सबसे पहले वर्ष 1946 में फिल्म बक प्रहलाद के लिए गाने का मौका मिला। गीता दत्त ने कश्मीर की कली, रसीली, सर्कस किंग जैसी कुछ फिल्मों के लिए भी गीत गाए, लेकिन इनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। इस बीच उनकी मुलाकात महान संगीतकार एसडी बर्मन से हुई। गीता राय में एसडी बर्मन को फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने गीता दत्त से अपनी अगली फिल्म दो बाई के लिए गाने की पेशकश की।

0: मुझे धीरे चलना।
1: वर्ष 1947 में प्रदर्शित फिल्म दो भाई गीता दत्त के सिनी कैरियर की अहम फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में उनका गाया ये गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। फिल्म दो भाई में अपने गाए इस गीत की कामयाबी के बाद बतौर पार्श्व गायिका गीता दत्त अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई।

वर्ष 1951 गीता दत्त के सिनी करियर के साथ ही व्यक्तिगत जीवन में भी एक नया मोड़ लेकर आया। फिल्मबाजी के निर्माण के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक गुरुदत्त से हुई। फिल्म के एक गाने तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले की रिकॉर्डिंग के दौरान गीता दत्त को देख गुरुदत्त मोहित हो गए। इसके बाद गीता दत्त भी गुरुदत्त से प्यार करने लगी। वर्ष 1953 में गीता दत्त ने गुरुदत्त से शादी कर ली। इसके साथ ही फिल्मबाजी की सफलता ने गीता दत्त की तकदीर बना दी और बतौर पार्श्व गायिका वो फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई।

0: लगाने।
1: दिलों की गहराई तक उतर जाने वाली आवाज और गाने की दिलकश अंदाज के मलिका गीता दत्त भारतीय फिल्म संगीत में पश्चिमी प्रभाव की पहचान थी और वो ऐसी फनकार थी जिन्होंने हर तरह के गीत गाने में महारत हासिल थी। गीता दत्त की जादुई आवाज सबसे पहले जोगन में सुनने को मिली। इस फिल्म में उन्होंने मीरा के आत्रनाद को उड़ेल कर श्रोताओं को विरही बना दिया है। वह खुलकर गाती है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, घूंघट के पट खोल रे तो हे प्रिया मिलेंगे। और गीता के प्रिया उससे 9 साल पहले चले गए। वह गाती रही, जोगी मत जा मत जा। गीता दत्त ने गुरुदत्त की फिल्मों में क्या खूब गाया है, गले से नहीं एकदम दिल से, उनके मन की बेचैनी तथा छटपटाहट एक एक शब्द से रिश्ते मिलती है। फिल्म चाहे बाजी हो या आर पार, सीआईडी हो या प्यासा, कागज के फूल हो या चौधरी का चांद, उनके स्वर की विविधता का कायल हो जाता है श्रोता। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभल के, हाँ बड़े धोखे हैं इस प्यार में, सचमुच उन्हें प्यार में धोखा खाया, फिर भी गाती रही, ये लो मैं हारी पिया, कोई तेरी जीत नहीं।

साहे बीबी और गुलाम फिल्म भले ही छोटी बहू यानी कि मीना कुमारी की फिल्म रही हो, लेकिन छोटी बहू का दर्द, शिकायत, अकेलेपन की पीड़ा, पति की बेवफाई को गीता की आवाज ने पर्दे पर ऐसा उतारा कि मीना अमर हो गई। न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। और मीना के साथ सिनेमा घर के अंधेरे में डूबे हजारों दर्शक रोए। गीता दत्त ने हर तरह के गाने गाए हैं। फिल्मबाजी के गीत जरा सामने आओ, जरा आंख मिला मैं श्रोताओं को उन्मादी स्वर मिलते हैं। बाई बाई का गीत ऐ दिल मुझे बता दे तो सुनकर मन प्रेम की सफलता से भर जाता है। प्यासा की गुलाबों का जीवन संगीत सुनकर मन अमृत प्यास में खो जाता है। आज सजन मोहे अंग लगा ले जन्म सफल हो जाए, लेकिन गीता ने जिंदगी भर जिंदगी का जहर पिया। कैसे कोई जिए जहर है जिंदगी, वह शराब का जहर रोजाना गले के नीचे उतारती रही और एक दिन सबको अकेले छोड़कर चली गई।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। गीता दत्त और गुरु दत्त का प्यार परवान चढ़ने लगा। गीता और गुरु दत्त ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन गीता के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। बावजूद इसके दोनों ने परिवार के विरोध को दरकिनार करते हुए 26 मई 1953 को साधारण तरीके से शादी कर ली। शादी के बाद गीता दत्त के 3 बच्चे तरुण दत्त, अरुण दत्त और नीना दत्त हुए। गुरु दत्त और गीता दत्त की शादी में सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक अफवाहों ने इनके हंसते खेलते परिवार में ग्रहण लगा दिया। इस खूबसूरत प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद गुरु दत्त ने गीता दत्त पर बंदिशें लगा दी कि वह सिर्फ उन्हीं की फिल्मों में गाएगी।

काम में प्रीति समर्पित गीता दत्त तो पहले इस बात के लिए राजी नहीं हुई, लेकिन बाद में गीता दत्त ने किस्मत से समझौता करना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे अन्य निर्माता निर्देशकों ने गीता दत्त से किनारा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद गीता दत्त अपने पति गुरुदत्त के बढ़ते दखल को बर्दाश्त न कर सकी और उसने गुरुदत्त से अलग रहने का निर्णय कर लिया। इस बात की एक मुख्य वजह यह भी रही कि उस समय गुरुदत्त का नाम अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ भी जोड़ा जा रहा था, जिसे गीता दत्त सहन नहीं कर सकी। गीता दत्त से जुदाई के बाद गुरुदत्त टूट से गए और उन्होंने अपने आप को शराब के नशे में डुबो दिया।

हिंदी के अलावा गीता दत्त ने कई बंगला फिल्मों के लिए भी गाने गाए। इनमें तुमी जो आमार, निशी रात बाका चांद, दूरे तुम्हें आज जैसे गीत श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय है।

10 अक्टूबर 1964 को अत्यधिक मात्रा में नींद की गोलियां लेने के कारण गुरुदत्त इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता दत्त को गहरा सदमा पहुंचा और उसने भी अपने आप को नशे में डुबो दिया। 70 के दशक में गीता दत्त की तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने एक बार फिर से गीत गाना कम कर दिया। लगभग 3 दशक तक अपनी आवाज से श्रोताओं को मदहोश करने वाली पार्श्व गायिका गीता दत्त ने अंत 20 जुलाई 1972 को इस दुनिया से विदाई ली।

0: तो दोस्तों, आज के सुनहरे पल का सफर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन गीत अभी जिंदा है और गीता जी की वो आवाज अब भी कहीं दिल के कोने में गूंज रही है। वो सिर्फ गाने वाली नहीं थी, वो एहसास थी, जज्बात थी और हर उस दिल की धड़कन थी जो प्यार करना जानता है, ये इंतजार में जीता है। आज का ये सुनहरे पल यादों के नाम, जो न कभी पुरानी होती है ना कभी बुलाई जा सकती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहे। नमस्कार, जय हिंद।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 11। आज का कार्यक्रम आधारित था बॉलीवुड की मशहूर गायिका गीता दत्त पर, रिकॉर्ड किया भरत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान, लेकर आया हूं कहानियों का सिलसिला। आपके लिए जो कहानी लाया हूं, उस कहानी का शीर्षक है परिवार में सहयोग और सम्मान की शक्ति। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे थे। परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन सभी एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा था और गांव के लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि यह पानी उनके खेतों के लिए जरूरी था। दादा ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा,
1: हम सभी को मिलकर तालाब को फिर से भरने की कोशिश करनी होगी। यदि हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी।
0: सबने मिलकर काम शुरू किया। छोटे बच्चे पानी इकट्ठा कर रहे थे, महिलाएं खाना बना रही थी और पुरुष तालाब की मरम्मत कर रहे थे। परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था। काम करते हुए दादा ने कहा,
1: यह काम केवल मेहनत से नहीं होगा, हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से काम करना होगा, तभी हम सफलता पा सकते हैं।
0: बहुत मेहनत के बाद तालाब फिर से भर गया और गांव के खेतों को पानी मिल गया। सभी लोग खुश थे। परिवार के हर सदस्य को समझ में आ गया कि यदि हम एक दूसरे का सम्मान करें और मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार का प्रेम, सम्मान और सहयोग जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार में एकता और प्यार से ही हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। माता पिता का बलिदान और बच्चों का सम्मान दोनों ही परिवार की नींव होते हैं। यही परिवार के असली मूल्य हैं, जो हमें जीवन में सफलता और खुशी दिलाते हैं।

अगर आपके पास भी कोई मौलिक कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर 7056413010 पर। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो मैं उस कहानी को अपनी आवाज़ देकर श्रोताओं तक पहुंचाऊंगा। मिलता हूं एक और कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

नमस्कार, 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो और लघु कथाओं की श्रृंखला में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई लघु कथा जिसका शीर्षक है जीने की राह। और इस लघु कथा के रचनाकार हैं ललित अकिंचन। आइए सुनते हैं ये लघु कथा। संत एकनाथ के पास एक आदमी गया और पूछा, दुनिया में किस तरह से रहना चाहिए? संत ने कहा, जरा सामने आ, पहले तेरा माथा तो देखूं कि तेरा जीवन बाकी भी है या नहीं। वो आदमी सामने आया और माथा दिखाया। संत ने कहा, तेरी तो 7 दिनों में मौत है, अब तू कहे तो बताऊं। आदमी बोला, फिर रहने दो। भागता हुआ चला गया। सबसे पहले उसने उन लोगों से माफी मांगी जिनको उसने भला बुरा कहा था, फिर जिन लोगों से झगड़ा किया था, बेईमानी करी थी, उनसे भी जाकर माफी मांगी। तब घर जाकर बच्चों को उनका हक दिया, पत्नी को पत्नी का हक दिया। पत्नी से बोला, मेरी यात्रा का मोड़ मुड़ रहा है, मैं भगवान का सहारा ले रहा हूं, हो सके तो तू भी भगवान का सहारा ले ले। इस तरह से 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वो भगवान के ध्यान में बैठा, मन बड़ा हल्का था। फिर से ध्यान आया कि एक बार संत से चलकर पूछ लें कि कैसे जीना है, अगले जन्म में फिर वैसे ही जी लेंगे। गया संत के पास, पूछा, महाराज किस तरह से दुनिया में जीना चाहिए? संत ने कहा, पहले ये बता कि ये 7 दिन कैसे बीते, कितने लड़ाई झगड़े किए, अरे किस किस से बेईमानी की? वो आदमी बोला, महाराज कोई नए लड़ाई झगड़े तो नहीं किए, बल्कि जो पुराने थे ना वो भी जाकर निपटाया हूं, माफी मांगाया हूं और उन्होंने माफ भी कर दिया है। संत ने पूछा, अच्छा इन 7 दिनों में भगवान को याद किया कि नहीं? वो बोला, महाराज भगवान याद रहा, क्योंकि मौत सामने थी। संत ने कहा, तो जा फिर बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही बिता ले। बोला, पर आपने तो हमारा माथा देखा था कि 7वें दिन हमारी मौत हो जाएगी। संत ने कहा, मौत तो 7 दिनों में ही है, सोमवार नहीं तो मंगलवार, ये 7 दिन ही हैं। मैंने सिर्फ तुमको समझाने के लिए जरा घुमा फिरा कर समझाया है, वरना आदमी सीधे तरीके से समझता कहाँ है। तो आप भी ये समझ लीजिए कि दोस्तों, जब तक हमारे दिमाग में चीज रहती है कि हमारे पर किसी की नजर है, हमें किसी के पास जाना है, हम चंद दिनों के मेहमान हैं, अपना किरदार निभाने के लिए आए हैं, तब तक हम अपने व्यवहार को ठीक रखते हैं, और जब ये भूल जाते हैं फिर अपने पुराने ढर्रे पर चलाते हैं। कोशिश करें हर दिमाग में रहे कि ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखा जाए।

0: आप सुन रहे थे रेडियो वितस्ता पर हमारी लघु कथाओं की श्रृंखला में हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक था जीने की राह। और इस लघु कथा के रचनाकार थे ललित अकिंचन। और दोस्तों, अगर आप भी लघु कथाएं लिखते हैं या आपके पास भी कोई ऐसी लघु कथा है जिसको आप किसी और तक तो पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी लघु कथाएं रेडियो वितस्ता पर हमें भेजिए। हम आपकी लघु कथाओं को आपके नाम के साथ ही प्रसारित करेंगे। हमारे पास लघु कथाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। हमारा दूरभाष नंबर है 7056413010। और अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं एक और नई लघु कथा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
1: तो छु बोजन FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजन रूजिव पनिन पसंदीदा बात।

नमस्ते दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको अपनी पसंद के चंद नगमे सुनवाएंगे। हमें उम्मीद है हमारी पसंद आप जरूर एक्सेप्ट करेंगे। मैं हूं इस कार्यक्रम में आपका मेजबान रमेश मराठा।

हम हैं यहां मुसाफिर, चलते हैं बेदर्द मौसम में, अपनी अपनी मंजिल की तलाश है। शायद कभी मील के पत्थर को छूते और तुम्हारी मांग में सिंदूर भी भरते, तुम शरीक सफर बन पाते, पर ये राहें हैं दुश्वार और पथरीले, इन पगडंडियों में फिसलन है। और अब ये रास्ते गीले हो चुके हैं।

0: एक एहसास है। मोहब्बत एक एहसास है, खुशबू की तरह। सिर्फ इसे महसूस करने की जरूरत है। इन बुझी हुई महफिलों में शायद ये रौनकें यूं ही बरकरार रहें, गर वक्त से पहले तुम लौट आओ। तुम अक्सर कहा करते थे, लौट आऊंगी, फिर से तुम्हारे आगोश में पनाह लूंगी, और एक साथ मोहब्बत के एहसास को महसूस करने की हम दोनों कोशिश करेंगे,
1: तुम जो मिल गए हो,
0: ताकि अधूरे वादों को निभाकर हम इन्हें पाए तकमील तक पहुंचा सके। यही मेरी रब से इल्तिजा है।

जब तुम लौट आओगे हमारी दुनिया में, ये हवाएं फिजाएं इन कपकपाती धड़कनों को हम संभाल लेंगे। यरकानी पत्तों के इस मौसम में अपनी मखमली दुआओं से बज़्म इलाही में शायद हमारी इल्तिजा, हमारी फरियाद सुनी जाए। हमने ये भी सुना है रब यही बसता है और उसकी रहमत का कोई हिसाब नहीं।

होते साथ साथ, शायद फुर्सत में हम तुम्हें चाहते, पर काश फुर्सत होती, दीवानेपन की हदों को दरकिनार कर ऐसा ख्वाब अपनी आंखों में बसाने से क्या हासिल जिस ख्वाब की ताबीर न हो। मिला तुमसे जो भी वो खामोश पानी की लकीरें जैसे ही है।

मुस्कुराहट, रुखसार पे मुस्कुराहट, अन सुलझे सवालात, शब रोज ख्वाबों में दस्तक देना, पथरीले रास्तों को हरा कर मुझे मेरे भटकाव से मुक्त करना, यही तेरा एहसान था, तुम्हारा करम, तुम्हारी नवाजिश थी।

दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी और सम्मान एपिसोड 8 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। रिकॉर्ड एवं एडिट किया भरत सोपोरी ने, सहयोग कृष्णा का, प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशन आरजे किरणी।

ना कमजोर है ना बिचारी है, ये नारी ही दुनिया की जिम्मेदारी है। जिस घर में उसका सम्मान रहता है वही घर सच में संस्कारी है। जंजीरें टूट जाती है जब इरादे जागते हैं, सपने सच हो जाते हैं जब कदम बढ़ते हैं। औरत जब अपनी पहचान बना लेती है तो इतिहास नए रास्ते लिखते हैं। नारी ममता की कोमल मूरत होने के साथ साथ संघर्षों की कड़ी धूप को सहने वाली एक अटूट शक्ति भी है, जो आज घर की दहलीज लांघकर आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। वो केवल त्याग और तपस्या का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सशक्त राष्ट्र की पहचान और समाज का सच्चा सम्मान है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जब हम नारी को बराबरी का आकाश और सम्मान देते हैं, तब पूरा संसार प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम नारी के सपनों को एक नई उड़ान और समाज में उनकी गरिमा को एक नया आयाम देंगे। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी और आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज पूरा विश्व नमन कर रहा है उस शक्ति को जिसके बिना सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज के हमारे विशेष प्रोग्राम नारी और सम्मान में बात करेंगे विश्व महिला दिवस की, जिसका थीम है गिव टू गेन। दोस्तों, इस थीम का गहरा अर्थ है, जब समाज नारी को सम्मान, सुरक्षा और सम्मान अवसर देता है तो बदले में वो एक सशक्त राष्ट्र और समृद्ध भविष्य पाता है। ये एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा पीढ़ियों तक मिलता है। तो रेडियो वितस्ता के साथ जुड़िए क्योंकि आज हम बात करेंगे उन कंधों की जिन्होंने आसमान उठा रखा है। जब हम नारी और सम्मान की बात करते हैं तो भारत की उन महान महिलाओं का नाम गर्व से ऊपर आता है जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़कर इतिहास रचा। याद कीजिए सावित्री बाई फूले को, जिन्होंने अपमान सहकर भी बेटियों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। खेल जगत में पीवी सिंधु और मैरी कॉम ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय नारी की मुट्ठी में कितनी ताकत है। विज्ञान के क्षेत्र में टेसी थॉमस, जिन्हें भारत की मिसाइल वुमन कहा जाता है, और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो इस बात का जीवंत प्रमाण है कि एक साधारण पृष्ठभूमि की महिला भी देश के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकती है। इन सब ने देश को अपना पसीना और प्रतिभा दी, गिव, और बदले में भारत ने वैश्विक पटल पर सम्मान पाया, गेन।

दोस्तों, जब हम ग्यूट गेन की बात करते हैं, तो रणभूमि और आसमान में अपना शौर्य दिखाने वाली इन जांबाज बेटियों का नाम सबसे पहले आता है। याद कीजिए कर्नल सोफिया कुरैशी को, जिन्होंने मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर दुनिया को अपनी कमान का लोहा मनवाया, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी जांबाजों को, जिन्होंने नीले आसमान की ऊंचाइयों में तिरंगे का मान बढ़ाया। इन जैसी हजारों जांबाज महिला अफसरों ने अपनी सुख सुविधा और व्यक्तिगत जीवन का बलिदान देश की सुरक्षा के लिए दिया, यानी ग्यू, और बदले में भारत ने एक अटूट सुरक्षा कवच और विश्व सत्र पर नारी शक्ति का अदम्य साहस पाया। ये वीरांगनाएं आज की हर उस बेटी के लिए प्रेरणा की मशाल है, जो ये मानती है कि वर्दी सिर्फ एक लिबास नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा का सबसे बड़ा गौरव है।

दोस्तों, गिव्ट गेन की थीम को अगर कोई असल माने में जीता है तो वो है हमारे घर की होम मेकर यानी हमारी गृहिणी। अक्सर समाज उनकी मेहनत को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो किसी ऑफिस की फाइल्स पर साइन नहीं करती या उन्हें महीने के आखिर में सैलरी नहीं मिलती। लेकिन सच तो ये है कि एक गृहिणी 24/7 बिना किसी छुट्टी के काम करती है। वो घर की मैनेजर भी है, कुक भी है, डॉक्टर भी और बच्चों की पहली टीचर भी। वो अपना पूरा समय, अपनी इच्छाएं और अपनी नींद परिवार की खुशियों के लिए देती यानी गिव, और बदले में एक संस्कारित परिवार और समाज की मजबूत नींव बनती यानी गेन। बिना किसी पदवी या कैबिन के एक घर को घर बनाए रखना दुनिया की सबसे बड़ी लीडरशिप है। आज रेडियो वितस्ता पर हम उन सभी करोड़ों माताओं और बहनों को सलाम करते हैं जो खामोशी से राष्ट्र निर्माण की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण ईंट रख रही है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नारी और सम्मान FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार पर। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, बेटी वो है जो घर को स्वर्ग बनाती है। हमारी बेटियां सिर्फ लाडली नहीं है, वो लीडर्स है। आज की बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, स्टार्टअप खड़ा कर रही हैं और ओलंपिक में पदक जीत रही हैं। ग्यूटिंगेन का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि अपनी बेटियों को पाबंदियां नहीं बल्कि पंख दीजिए, उन्हें वो भरोसा दीजिए कि वो जो चाहे बन सकती हैं। जब हम एक बेटी को शिक्षित करते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक पूरे परिवार और आने वाली नस्लों को शिक्षित करते हैं। रेडियो विस्तार के प्यारे श्रोताओं, अक्सर हम पूछते हैं कि समाज ने हमें क्या दिया, लेकिन आज ग्यू टू गेन के तहत हमें खुद से पूछना है कि हमने अपनी महिलाओं को क्या दिया। क्या हम उन्हें वर्क प्लेस पर सुरक्षित महसूस कराया? क्या हमने घर के कामों में उनकी मदद की ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके? बदलाव तभी आएगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे। सम्मान दीजिए ग्यू और आप देखेंगे समाज में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी गेन, जो देश की अर्थव्यवस्था और खुशहाली को दुगना कर देगी।

मैं जब घर छोड़कर यहाँ पहली बार आई थी तो मैं बहुत रो रही थी, और आज जब घर वापस जाने का वक्त आ गया है तो फिर से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं।

तो दोस्तों, आज के इस विशेष महिला दिवस पर बस इतना सा संदेश। नारी को अवसर दीजिए, सम्मान दीजिए, विश्वास दीजिए, क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो सिर्फ उसका जीवन नहीं, पूरा समाज आगे बढ़ता है। याद रखिए, नारी को दिया गया सम्मान ही एक बेहतर भविष्य की सबसे बड़ी नींव है। वक्त का पता ही नहीं चला कि हम पहुंच गए हैं इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर। आज 8 मार्च को रेडियो वितस्ता के माध्यम से आइए हम सब एक संकल्प लें। संकल्प नारी की गरिमा की रक्षा का, संकल्प उनकी उड़ान को सहारा देने का। जाते जाते बस इतना कहूंगी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग बगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी को मत आंको किसी एक रूप में, वो शक्ति है हर संघर्ष और स्वरूप में। जिस दिन उसका सम्मान सच्चे मन से होगा, उसी दिन समाज महान अपने स्वरूप में होगा। मैं किरणी आपसे अनुमति चाहूंगी इसी उम्मीद के साथ कि हर बेटी सुरक्षित हो, हर महिला आत्मनिर्भर हो और हर सपना सच होने का हक पाए। आप सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी और सम्मान एपिसोड 8 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। रिकॉर्ड एवं एडिट किया भारत सोपोरी ने, सहयोग कृष्णा का, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

पेश है कार्यक्रम परिचर्चा एपिसोड 3। हमारे आज के मेहमान हैं श्रीमान विशाल शर्मा डार्ली। प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।

0: आप सभी का स्वागत है FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। लेके आया हूं कार्यक्रम परिचर्चा, जिसमें हम बात करते हैं कला की, संस्कृति की। तो आज आपको मिलवाता हूं एक अभिनेता निर्देशक से, जिनके रूह में बसा है अभिनय, जो इस कला की पूजा करते हैं और इस कला ने इनको देश विदेश में एक पहचान दी है। हमारे देश के नेशनल टेलीविजन पर अभी अभी संपन्न हुआ टीवी सीरियल जनूनियत में एक पिता की भूमिका इन्होंने निभाई है, जो दर्शकों को बेहद पसंद आया और पूरे देश ने बहुत सारा प्यार इनको दिया। आइए स्वागत करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान श्री विशाल शर्मा जी का, जिनको विशाल डार्ली के नाम से भी जाना जाता है। सर, आपका स्वागत अभिनंदन FM 90.0 MHz स्टूडियो में।
1: नमस्कार भारत जी, और बताइए कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूं, और आपके स्टूडियो में आकर तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आज हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और हमारा स्टूडियो आज पावन हो गया आपके आने से।
1: ये तो मेरी खुशकिस्मती है जी कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और मैं यहाँ आया।
0: सर, इस कार्यक्रम में हम एक संक्षिप्त सी बात करते हैं आपके साथ, और जितने हमारे श्रोता है वो इच्छुक होंगे आपके बारे में जानने के लिए। आपको उन्होंने स्क्रीन पर देखा, एक किरदार में देखा, पर आज हमारे साथ बलजीत मेहता नहीं है, बल्कि आज हमारे साथ है श्री विशाल डार्ली जी। तो हम चाहेंगे कि आज हम विशाल जी से उनके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे, और जो प्यार लोगों ने टीवी स्क्रीन पर बलजीत मेहता जी को दिया है, और वही प्यार आज वो निछावर करना चाहते हैं श्री विशाल शर्मा जी से, जिनको विशाल डार्ली के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय कृपया हमारे श्रोताओं को दें, ताकि वो आपके बारे में और जान सके और आपके दिल तक पहुंच सके।
1: भारत जी, ऐसा है कि तो आपने बता ही दिया, मेरा नाम है विशाल शर्मा, मैं बेसिकली पंजाब से हूं, पंजाब के जलंधर शहर से
0: जी।
1: और जो मेरा ये सफर है, ये बचपन से शुरू हो गया था
0: जी।
1: बचपन में मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में फिफ्थ क्लास में पढ़ता था, तब मैंने पहली बार स्टेज पे एक स्किट की थी स्कूल की ओर से
0: जी।
1: तो तब लगा कि कुछ करना चाहिए। फिर हमारे एक जलंधर दूरदर्शन में थे श्री सुरेंद्र साहनी जी, वो प्रोड्यूसर थे वहां पे, तो उनका एक सीरियल आता था, तो पंजाब में तब पहला हिंदी सीरियल शुरू हुआ था सांवली
0: जी।
1: तो उसमें उन्होंने मुझे, तब मैं शायद सेवंथ या एट्थ में पढ़ता था, तो मुझे एक छोटा सा रोल दिया था उसमें। मुझे आज भी याद है, मैं उसमें चोर बना था और उसमें मेरा नाम था महेशी, मुझे अभी भी याद है वो दिन
0: जी।
1: तो वो मेरा पहला ऑन स्क्रीन था जिसमें मैंने कैमरा फेस किया था पहली बार। तो वो उसके बाद एक और मैंने किया ऐसा ही छोटा सा रोल। फिर धीरे धीरे ये मेरी ये एक्टिंग वाला काम तो हुआ नहीं। फिर ऐसे हुआ कि जब मैं, फिर पढ़ाई चलती रही, कॉलेज चले गए, कॉलेज में थिएटर नहीं किया
0: जी।
1: तो ये मेरी जर्नी यहां से शुरू हुई। तो एक्टिंग तो मुझे थी कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ना मेरा वो एक्टिंग वाला जो स्किल था वो छूट गया, क्योंकि मेरा रुझान डायरेक्शन में चला गया
0: कि किसी चीज को अगर स्क्रीन पर दर्शाना है तो उसके पीछे जो भी सारी जानकारी है उस तरफ आपको ध्यान।
1: वो ऐसा हुआ ना, वो भी ऐसा हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। सुरेंद्र साहनी जी थे, उनकी ट्रांसफर हो गई दिल्ली में
0: जी,
1: दिल्ली दूरदर्शन में। सीपीसी दूरदर्शन बना था तब, सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर
0: जी।
1: तो वहां वो थे, तो उन्होंने मुझे पंजाब से बुलाया वहां पे, कि एक उन्होंने पत्थर बोलते हैं
0: जी,
1: निरंजन देसाई जी का था वो
0: जी।
1: तो उसमें मुझे एक छोटा सा पार्ट प्ले करना था कॉलेज स्टूडेंट्स का,
0: स्टेज पर
1: नहीं,
0: स्क्रीन पे
1: दूरदर्शन के लिए
0: जी।
1: तो मैंने किया, तो वहां मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा, मेरा इंटरेस्ट बना कि मुझे डायरेक्शन सीखनी है। तो फिर मैंने उनको अपना गुरु बना लिया, लगा जी आप मुझे इसमें डालो। फिर मेरा पहला कांटेक्ट पड़ा था दिल्ली दूरदर्शन में एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट
0: जी।
1: तो वहां से मेरी फिर डायरेक्शन वाली जर्नी शुरू हुई। वहां से मैंने सीखा, बहुत काम किया सर, दिन रात लगाया वहां सीखने के लिए। तो ऐसे मेरी ये जर्नी फिर डायरेक्शन की शुरू हुई।
0: विशाल सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जब हमारे मन में कोई इच्छा हो कुछ करने की, कुछ अलग करने की, तो जब उसका रास्ता मिलता है तो वो अनुभव उस समय कैसा होता है? क्योंकि जो अवस्था है वो किशोर अवस्था है, ये आगे किस तरफ हमें लेके जाए, तो वो उस समय की आपकी फीलिंग कैसी रही होगी?
1: सर वो ऐसे है कि देखो,

0: ना कहीं लेके जरूर जाएगा।
1: देखो वो मुझे एक बात याद आ रही है कि बंदा एक चीज मन में बार बार बार बार बार बार सोचता रहे सोचता रहे सोचता रहे सोचता रहे तो आपको वो वहां पहुंचा भी देती है वो चीज।
2: तो अगर इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में रखूं कि ऐसा कहा जाता है कि हमें अपनी जिंदगी में सपना देखना जरूर चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: जब आप सपना देखेंगे अपना एक आप एक चीज बुनेंगे मन में तो उसके लिए आप प्रयत्न करेंगे और वो सपना पूरा हो जाता है, क्या ये सही है?
1: बिल्कुल सर, अगर आप सपना ही नहीं देखोगे आपको आपका एक गोल ही नहीं होगा। आपको सपने में तो आप सपना देखोगे तो आप उसको पूरा करने की कोशिश करोगे ना
2: जी,
1: तो सपना तो आना चाहिए ना।
2: तो इसके साथ ही जुड़ा एक और प्रश्न करना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, अगर हम वो कोशिश करते कोई गलती करते तो क्या वो गलती हमें और अच्छाई की तरफ ले जाती है या वो हमें निराश करती है?
1: नहीं, गलतियां हमेशा सिखाती हैं। जब बंदा गलती जो हो जाती है ना उससे बंदे को सीख लेनी चाहिए गलतियों से। आप वो कहते हैं ना इंसान गलतियों का पुतला है, तो आप गलतियों से सीखते हो, और अगर आप गलतियों से नहीं सीखे फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलती एक बार होगी, दो बार होगी, तीसरी बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। तीसरी बार वो गलती नहीं होती
2: जी,
1: वो कुछ और ही हो जाता है फिर वो गलती नहीं होती, गलती एक या दो बार ही होती है।
2: यानी कि उससे जब हम सीखते हैं तो हम अगली बार कोशिश करते हैं कि हाँ, उस गलती को हम सुधारें।
1: बिल्कुल,
2: उसको सुधार के हम आगे चलते हैं। अगर वहां फिर एक और गलती हो जाती है उसको भी सुधारने का ऑप्शन है, पर एक ही गलती बार बार नहीं होती।
1: ना ना ना, फिर वो गलती नहीं रहती जी।
2: इसके साथ जुड़ा एक और प्रश्न मैं करना चाहूंगा और हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, कला और संस्कृति के साथ आप कब से जुड़े हैं? थिएटर और एक्टिंग आपकी जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है?
1: देखो जी, मेरे जो मैं अपनी फीलिंग बताऊं तो थिएटर जो है, थिएटर और हमारे टीवी में
2: जी
1: बहुत फर्क है
2: जी।
1: थिएटर एक आर्टिस्ट को, थिएटर बंदे को करना चाहिए। थिएटर से बंदा पॉलिश होता है, उसके अंदर का एक्टर बाहर आता है, उसको सीखने को मिलता है। लेकिन हमारे माध्यम और थिएटर के माध्यम में सिर्फ ये फर्क जरूर है कि थिएटर जो है वो हमेशा वो लाइव होता है
2: जी,
1: और उसमें कोई रीटेक नहीं होता
2: जी।
1: लेकिन हम जब टीवी पे करते हैं तो आपके पास ये चांस होता है कि आप उसको रीटेक कर सकते हो। और थिएटर ये होता है कि थिएटर आप पब्लिक के सामने करो, थोड़ा लाउड होता है उसमें हर चीज, उसमें आपकी वॉइस भी लाउड रहती है, उसमें एक्सप्रेशन भी लाउड रहते हैं। लेकिन टीवी में कैम माइक आपके यहाँ लगा है, आपको लाउड होने की जरूरत नहीं। वो खेलना और ये चीज थोड़ा फर्क है, लेकिन थिएटर करना बहुत जरूरी है। थिएटर करने से ही आदमी एक अच्छा एक्टर बन के बाहर निकलता है। मेरे हिसाब से थिएटर करना चाहिए।
2: अभी आपने कहा कि आपने जब अभिनय करना शुरू कर दिया, अभिनय के बदले आपका जो ध्यान है वो निर्देशन की ओर गया। अभिनय और निर्देशन में आप क्या अंतर समझते हैं?
1: देखिए, एक चीज ये है कि निर्देशक जो है, जैसे डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप है
2: जी।
1: उसके दिमाग में पहले ही एक पिक्चर बन जाती है, एक स्क्रिप्ट आती है, जो बेस है हमारा। एक स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट को पढ़ा, स्क्रिप्ट के हिसाब से उसके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि इसको मैंने कैसे प्रेजेंट। मेन क्या है डायरेक्शन में, क्या है कि हाउ टू टेक, आपके मन में क्या है, आप उसकी टेकिंग कैसे करते हो। प्रेजेंटेशन है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो चीज को, आपने एक एक सीन को आपने कैसे ब्लॉक करना है। ये एक डायरेक्शन के दिमाग, एक डायरेक्टर के दिमाग में रहती है ये पिक्चर
2: जी।
1: और एक्टर ये है, एक्टर डायरेक्टर के हाथ की कठपुतलियां हैं, जैसे वो कहेगा। इसलिए मुझे लगा कि डायरेक्टर बनना चाहिए
2: सही मायने में, उस कठपुतली की रस्सी कोई खींच ना ले
1: तो थोड़ा सा ये रहता ना, तो उस वजह से मुझे लगा कि मुझे डायरेक्शन करनी चाहिए। और फिर मैंने किया, बहुत सीखा। पहले मैं असिस्टेंट लगा, फिर चीफ असिस्टेंट हुआ, फिर एसोसिएट डायरेक्टर हुआ, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्शन की।
2: इस विषय पर हम आगे बात जरूर करेंगे, क्योंकि जितने काम आपने निर्देशक के तौर पर किए हैं उस विषय पर हम बात करेंगे। पर यहां मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न आता है
1: जी।
2: वो ये कि आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आप कोई भी चीज को निर्देशित करते हैं तो एक तरीके से जो आपने करना है उस पिक्चर को आप पहले ही मन में देख लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और आपकी क्या ऐसी सोच होती है कि मैंने उस तरीके से इस चीज को दर्शाना है स्क्रीन पे, ताकि एक आम दर्शक को वो समझ आए, वो स्टोरी हो, उस कहानी हो। तो इसका मतलब एक आधार क्या है, एक निर्देशक के लिए, और जो उसका दर्शक है उसके लिए एक

0: माध्यम क्या होता है?
1: माध्यम तो सर, माध्यम तो ये टीवी है ही है, लेकिन उसमें ये है कि हम क्योंकि मैं बात करूंगा ज्यादा टीवी की, क्योंकि मैंने टीवी में काम ज्यादा किया और थिएटर मैंने इतना किया नहीं, लेकिन इसमें ये रहता है कि आप के दिमाग में जो पिक्चर आपको कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे आप उसमें अपने करेक्टर को कैसे ढालते हो, जिसकी वजह से सामने वाला दर्शक जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व हो। जब तक सामने वाला व्यूअर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वो आपकी चीज को क्लिक कर ही नहीं पाओगे आप। अब एक श्रोता है, अब वो उस करेक्टर में जब तक अपने आप को नहीं लेगा ना, तो चीज आपकी हिट तब होती है जब वो अपने आप को इन्वॉल्व करने लगते हैं। हाँ यार, मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मेरे साथ
0: ऐसा हुआ है।
1: वो इन्वॉल्वमेंट जब होती है ना, वो वही चीज डायरेक्शन यही है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो और लोगों को कैसा लग रहा है उसमें
0: जी,
1: लोगों के दिल को छूगी बात
0: जी,
1: तो वो चीज तो
0: आगे बिल्कुल बढ़ने वाली है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: एक निर्देशक के तौर पर आप अभिनेताओं को, खास करके जो नव युवक अभिनेता, उनको आप क्या अपनी ओर से संदेश या एक मैसेज, ऐसी बात कहना चाहें जिनसे वो इस प्रोफेशन को आगे आने वाले दिनों में उसको बना सके?
1: देखिए भारत जी, ऐसी बात है कि जो आजकल चल रहा है ना, आजकल क्या है कि एक बंदा थोड़ा सा कहीं काम करता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया, लेकिन ये हमारी लाइन ऐसी है, कोई भी पूरी तरह से पूरा परिपक्व नहीं हो पाता
0: जी।
1: इसके लिए ये है कि, और आज क्या चल रहा है कि अभी मैं आपको बताता हूं कि अभी क्या होता है कि पंजाब में या कहीं भी कुछ भी काम किया, थोड़ा सा थिएटर ही कर लिया, उसको लगा कि अब मैं एक्टर हो गया हूं, वो पहले अपनी उड़ान लेता मुंबई में,
0: वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है।
1: हुआ एक काम ही किया तो उसको लगता कि मैं एक्टर बन गया, ये क्या है, इसमें क्या मुश्किल है, तो वो निकलता है मुंबई में और घर वालों को ये इतना बड़े सब्ज बाग दिखा के जाता कि मैं तो अब एक्टर बन जाऊंगा। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, तो वहां मैं आपको बताऊं, वहां कम से कम 2000 बंदा रोज उतरता है एक्टर बनने के लिए
0: जी,
1: तो उसमें 2-4 ही बन पाते हैं। बाकी क्या, बाकी की जिंदगी क्या होती है, वो वापस तो आ नहीं सकते क्योंकि घर पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो उनकी जिंदगी वहीं पर सिमट जाती है, तो उनको कहीं कैसे काम करने पड़ते हैं। इसलिए मैं आज की जनरेशन को ये कहना चाहता हूं, पहले अपने आप को पहचानो, पहले देखो आप कहां तक पहुंच गए, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, बंदा रोज सीखता है, हर रोज सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारी लाइन ही एक ऐसी जो टाइप नहीं है
0: और जो हर दिन बदलती है।
1: टाइप है नहीं, रोज नया। अब कोई नौकरी वाला बंदा वो सुबह जाएगा ऑफिस, शाम को आएगा, उसकी टाइप लाइफ है कि यहां सुबह गए, कोई डॉक्टर है उसने पता डॉक्टर शाह को सुबह तक गए ऑपरेशन किया ये किया, हमारी लाइन रोज नहीं है, रोज नया है, नया एडवेंचर है, नया कुछ सीखने को है, हर चीज नई कुछ। तो इसलिए मैं वो नई जनरेशन को यही कहना चाहता हूं कि आप पहले अपने आप को पहचानो, क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर का एक इंसान जो है ना, जो अंदर एक बंदा बैठा ना, वो सही गवाही देता है
0: जी,
1: लेकिन आप उसकी ना सुन के सीधा अपनी करने लगते हो ना, तब बंदा फंसता है
0: जी।
1: बाकी ये जो है, ये
0: तकदीर, जो
1: आपका तकदीर है वो बहुत काम करती है, आपकी तकदीर ने अगर आपको वहां लेके जाना तो वो तो जरूर ले जाएगी, लेकिन अपने आप को पहचानने के बाद ही उस जगह चलो, करो मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे वो परमात्मा जरूर साथ देता है जी, वो उसको उसकी कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त है ना, हम लोग सोच नहीं सकते कि वो क्या कैलकुलेट करके बैठा आपको, आपको कहां से कहां ले जाना उसने, उसको पता है।
0: पर जो हमें पहले करना काम अपना है, सीखना है,
1: वो
0: उसको पूरी तरह से सीखें, फिर आपकी मन गवाही देगा कि अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, आगे कदम उठाने के लिए तैयार हूं, तब ही उठाया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पूरा उसमें आप पूरी तरह आओ तो सही ना उसमें।
0: आपके साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आइए हम थोड़ा सा डाइवर्शन लेते हैं, जैसे आप अभिनेता है, जैसे आप निर्देशक है, आपने बहुत सारा काम किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप संगीत के साथ ना जुड़े हों, तो मैं चाहता हूं कि आपकी कोई पसंद का कोई गाना जो हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, और आप कृपया उसके बारे में बताएं, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: नहीं नहीं जरूर, क्योंकि म्यूजिक जो है ना वो तो एक मेन फैक्टर है हमारी जिंदगी में भी और हमारी इंडस्ट्री में भी, तो ऐसे है गाने तो बहुत है, लेकिन एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आइए श्रोताओं, आपको विशाल सर का ये पसंदीदा गाना सुनाते हैं, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सब कुछ

0: मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं कार्यक्रम परिचर्चा। आज बात कर रहे हैं श्री विशाल शर्मा जी के साथ, और जिनको विशाल डार्ली के नाम से भी जाना जाता है। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अलग अलग राज्यों में टीवी के लिए टीवी सीरियल्स का निर्माण किया है एक निर्देशक के तौर पर, कैसे याद करते हैं उस समय को, और क्या कुछ खास लोगों की याद भी आती है?
1: हाँ, ये जब मैं डायरेक्शन में आया, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने दिल्ली दूरदर्शन में मैं एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट शुरू किया थी मैनेजर
0: जी,
1: वहाँ कुछ प्रोग्राम्स किए। फिर मैं एक प्रोग्राम आता था हार्ट टू हार्ट, वो एक डिस्कशन प्रोग्राम था, वो
0: मतलब दिल से दिल तक।
1: हाँ, वो सुरेंद्र साहनी जी ने किया था
0: जी,
1: तब मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था। उसके बाद फिर ऐसे ही जर्नी चलती रही, कई प्रोग्राम बनाए, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। वो दिन इसलिए याद आता है क्योंकि एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट सबसे पहली बार मेरा कैप्शन गया था,
0: जो स्क्रीन पे आपका
1: नाम आया था
0: जी।
1: तो इसलिए वो चीज मैं कभी नहीं भूलता कि जब पहली बार मेरा नाम आया था। फिर मैंने फीचर फिल्में की पंजाबी
0: जी,
1: तो उसमें मैं चीफ असिस्टेंट बना। एक थी फिल्म पुर्जा पुर्जा कटमरे
0: जी,
1: उसमें गुग्गू गिल, उपासना सिंह, दीप ढिल्लो, ये सारे थे। फिर एक वो डायरेक्ट की थी सुरेंद्र साहनी जी ने। फिर एक फिल्म की थी दिलदारा, उसमें मैं एसोसिएट था, तो उसमें कुलभूषण खरबंदा, तनुजा जी, सईद जाफरी, ये सब कलाकार थे। तो बड़ा अच्छा लगा काम करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मेरे गुरु थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, सुरेंद्र साहनी जी, उन्होंने बहुत मुझे सिखाया। ऐसे सीखते थे, क्योंकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि तब डिजिटल नहीं था, फिल्म पे काम होता था
0: जी,
1: तो वो नेगेटिव पे काम होता था, मैगजीन पे, उसके बाद उसको पॉजिटिव होता है, वो बड़ा लंबा प्रोसेस था, लेकिन उससे बंदे को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा, मुझे याद है कि, और एक वो दिन नहीं कभी मैं बोलता जब मैं पहली बार मैंने कैमरे के पीछे खड़े होकर पहली बार एक्शन बोला था, वो बड़ा याद आता वो दिन, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्शन दे रहे हो और पहली बार आपके मुंह से एक्शन निकलता है, डायरेक्टर के लिए तो सबसे बड़ी बात,
0: बहुत बड़ी बात होती है
1: कैमरा रोल और एक्शन जो है ना, वो जब पहली बार मैंने एक्शन बोला, तो वो एक एनआरआई सभा की एक फिल्म थी
0: जी,
1: इसका नाम था मिट्टी की महक, मिट्टी दी महक, उसमें हमने कुछ ड्रामा किया था, ड्रामा तो उसमें कुछ आर्टिस्ट लिए थे, तब मैंने पहली बार एक्शन बोला था। तो वो हमारे हैं पंजाब के एक बहुत बड़े राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सतनाम चाना जी,
0: जी
1: वो राइटर भी है बहुत बड़े, उन्होंने वो फिल्म लिखी थी। फिर ऐसे करते करते मैंने एक सोनालिका पर, सोनालिका ट्रैक्टर्स वालों के लिए फिल्म बनाई थी
0: जी,
1: ऐसे बहुत काम किए। फिर वहां से मेरी जर्नी एज ए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुरू हुई। तो फिर कॉमेडी बनाई, सीरियल बनाए मैंने, काशीर दूरदर्शन के लिए
0: जी,
1: काशीर के लिए, शिमला दूरदर्शन के लिए, जालंधर के लिए, कई जगह के लिए फिर मैंने काम किया। तो ऐसे करते करते फिर एक हमारे पंजाब में आता छनकाटा
0: जी,
1: छनकाटा 2004 और 2005 वो मेरे डायरेक्ट किए हुए हैं
0: जी,
1: उसमें जसविंदर भल्ला जी जो चाचा चतुर सिंह के नाम से बड़े मशहूर
0: हुए,
1: अब तो वो फिल्मों में उनके पास टाइम ही नहीं, फिल्में इतनी कर रहे हैं
0: जी,
1: तो उनके साथ भी काम किया, बड़ा अच्छा लगा, वो मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन दी। तो वो चीजें मैं कभी नहीं भूलता, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो टाइम, अब भी है, अब उससे और आगे बढ़ रहे हैं।
0: आपने सर अभी जसविंदर भल्ला जी का नाम लिया, मेरे बहुत ही पसंदीदा कलाकार है वो, आप उनके बारे में जो उनकी खासियत है, विशाल सर तुसी पंजाबी च दस सकते हो उनकी खासियत जो है वो क्या है?
1: उनकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि वो एक तो वो खुद लिखते हैं
0: जी,
1: सबसे बड़ी बात, कॉमेडी लिखना
0: आसान नहीं होता
1: है जी, और वो खुद लिखते हैं, और उनको ना आप उनके साथ बैठे बात भी करोगे ना, उनको बातें ऐसे निकलती हैं उनके अंदर से, और कॉमेडी निकलती है उनके अंदर से, क्योंकि हम तो रहते थे, हम तो इकट्ठे 10-10, 15-15 दिन स्क्रिप्ट पे काम करना, उन्होंने लिखना, फिर उन्होंने सुनानी, 10 बार चेंज करनी, लेकिन ऐसा था कि जब तक हम सेट पे नहीं पहुंचते ना, जब तक हम फ्लोर पे नहीं पहुंचे शूट के लिए, तब तक भी स्क्रिप्ट चेंज होती रहती थी, क्योंकि मन में नया आइडिया आ गया उन्होंने उसी टाइम। ये उनकी बहुत खासियत है कि वो स्क्रिप्ट पे बहुत वर्क करते हैं और लिखते बहुत अच्छा है।
0: क्या हम ये माने कि जब एक चीज आप तैयार करते हैं और जब वो स्क्रीन पे आता है एक दर्शक के लिए, एक क्षण में वो सीन निकल जाता है, तो कितनी मेहनत उसके पीछे होती है और कितनी बार आप डिस्कस करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, ताकि जितने भी हमारे इस समय इस प्रोग्राम के श्रोता है, जब वो स्क्रीन पर आपको और आपके काम को देखते हैं तो उनको ये अंदाजा हो कि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है।
1: और बहुत मेहनत होती है और बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं साथ में, हर एक की मेहनत है। देखो ये हमारी ये जो काम है ना, ये जो हम फिल्म बनाते हैं या कुछ भी, ये एक टीम वर्क है। अकेला बंदा कुछ नहीं, चलो एक डायरेक्टर है उसको पता क्या बनाना है, लेकिन एक पूरी टीम, कैमरा मैन, फिर लाइट्स मैन, स्पॉट बॉय, हर एक का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है और उससे फिल्म बनती है। और ये है कि बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं होता कि आप तो एक क्षण में देख के उसको डिसाइड कर ले, लेकिन जिनकी मेहनत लगी होती है उनको पता है कि कितनी मेहनत लगी है इसमें।
0: और जब आपने कोई चीज अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से एक बार फाइनल चीज बना दी, जब वो तैयार होकर स्क्रीन पे आती है, क्या उस डायरेक्टर को लगता है कि इसमें इससे और अच्छा किया जा सकता था?
1: हाँ, कई बार हो भी जाता है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार होता ना कि आपको बाद में पता चलता कि इसको हम ये कर सकते थे। लेकिन फिर भी जहां तक, ऐसा कभी ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन एक आध बार लगा है कि इसको ऐसा कर सकते थे। लेकिन कई बार क्या होता है भारत जी, क्या है कई बार आपकी कुछ लिमिटेशंस ना आपको वो चीजें नहीं करने देती
0: है।
1: लिमिटेशन जो आती है ना कई चीजों में।
0: ठीक है, जहां तक हमने आज तक इस प्रोग्राम में बात की है, तो या तो वो एक्टर रहे या उन्होंने अलग अलग जो किरदार है वो निभाए हैं, आज हम एक निर्देशक से बात कर रहे हैं। एक नया ही आयाम मुझे सुनने को मिला और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक है उनको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और प्रश्न करता हूं आपसे।
1: जी जी,
0: आप जब अभिनय करते हैं, क्या आपके अंदर का निर्देशक बीच में आता है?
1: हाँ, कई बार कोशिश करता है आने की, लेकिन उसको आने नहीं देना।
0: आने नहीं देते, क्योंकि उस समय जैसे आपने कहा निर्देशकशिप
1: चक्कर क्या होता है सर, ऐसे है कि जब मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूं कोई चीज
0: जी,
1: तो मुझे पता कि मैंने उसको क्या दिखाना है। मेरे दिमाग में पिक्चर है, अब जो मेरे दिमाग में पिक्चर है वो जरूरी नहीं कि आपके दिमाग में वो पिक्चर हो
0: जी।
1: मैंने कुछ सोचा है, जब मैं अपने काम जब करता हूं तो मुझे पता कि मुझे क्या दिखाना है, कैसे करना है। अब मैं एज ए एक्टर जा रहा हूं तो मेरे डायरेक्टर को पता है उसने क्या दिखाना है, इसलिए वहां पे कोई निर्देशक नहीं आड़े आना चाहिए।
0: वो उस समय वो कठपुतली होती है जिसकी डोरी बिल्कुल निर्देशक पे होती है, जब चाहे वो उसको खींच सके।
1: मैं तो सबको यही कहता हूँ कि अगर जो मुझे लगता है कि जब भी आप किसी की डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो आपको उसके हिसाब से ही चलना चाहिए जैसे वो चाहते हैं
0: जी,
1: क्योंकि उनको पता है वो उन्होंने क्या आगे भेजना
0: जी,
1: इसलिए आपको उनके हिसाब से ही चलना चाहिए, अपनी नहीं बीच में डालनी चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे।
0: मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी सीख है, अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं और अगर हम अभिनेता के तौर पर काम करते हैं, जो उस समय वो निर्देशक, उस समय का निर्देशक जो भी आपको करने के लिए कहे, आपको उसमें अपना 100% देना चाहिए।
1: नहीं, वैसे मैं भारत जी आपसे पूछता हूँ एक चीज, आप भी प्ले करते हो, डायरेक्ट भी करते हो
0: जी,
1: तो जब आप प्ले करते हो तो आपको कैसा लगे कोई बीच में आके आपको बहुत बोले नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे करो?
0: सर, मैं आपसे अपने दिल की बात पूछी और जो मेरे मन में सवालों के जवाब थे वही जवाब आपने दिए। हाँ, इतना जरूर हम करते हैं, अगर कोई हमारा कलाकार ही कहे कि सर आपने कहा इसको ऐसे करें, ऐसे ना करके हम इसको ऐसे करें, अगर वो मुझे अच्छा लगता है
1: फिर तो
0: मैं साथ ही स्वीकृति देता हूं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए।
1: वो करना चाहिए, वो एक सुजेशन अलग चीज है, लेकिन थोपना अलग बात होती है।
0: हाँ नहीं, अगर तो हम कोई चीज निर्देशन करते हैं किसी चीज का, हम यहाँ रेडियो में प्रोग्रामिंग करते हैं और अगर हमारा जो साथी वो कोई ऐसी बात कर देता है या वो किसी और तरीके से बात कर देता है तो हम उसको वहीं कट करके उसको दोबारा से करने की कोशिश करते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: कि वो भी निर्देशक नहीं हो सकता है जो दूसरे के कहने पे निर्देशन करे, तो ऐसा भी नहीं होता। अगर हम निर्देशन करते हैं तो हमारी एक टाइम लाइन है, उस टाइम लाइन के आगे पीछे
1: बिल्कुल।
0: मैं विशाल सर आपसे अपने मन के जो सवाल है उनके जवाब आपके थ्रू ढूंढ रहा हूं,
1: क्योंकि वो चक्कर क्या होता है सर, जैसे जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट उस डायरेक्टर के लिए उसका एक बेबी है
0: जी,
1: उसको कैसे करना है क्या करना उसके दिमाग में है, तो इसलिए कोई भी डायरेक्टर ये नहीं चाहेगा कि मैं अपना जो बेबी है या जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको, वो तो चाहेगा जितना अच्छा हो सके। मैं तो यही कहूंगा कि आप जिस भी डायरेक्टर के अंडर काम कर रहे हो उसकी स्वीकृति से ही सब काम करो,
0: सब काम करो। यहाँ पर विशाल सर हमारे पास एक और गाने की गुंजाइश है और हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं कि विशाल सर की अगली जो मनपसंद गीत वो कौन सा होगा, ताकि हम भी थोड़ा सा ब्रेक लें और हम अपने श्रोताओं का भी मनोरंजन करें।
1: तो सर वो गाना तो मेरा ख्याल सबका ही चाहने वाला गाना है, क्योंकि वो हम आर्टिस्टों के लिए ही बना है वो गाना।
0: जी,
1: तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
0: आइए श्रोताओं सुनाते हैं आपको राज कपूर जी का गाना जीना यहाँ मरना यहाँ, और हम अभी वापस आते हैं, आप बने रहिए।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिचर्चा। आज हमारे आमंत्रित मेहमान है एक्टर डायरेक्टर श्री विशाल शर्मा जी, जिनको विशाल डार्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये इस प्रोग्राम का अंतिम भाग है। विशाल सर, आपसे जानना चाहते हैं कलर्स के सीरियल जुनूनियत का सफर कैसे शुरू हुआ और इसमें आपके परिवार का क्या योगदान रहा?
1: सर, ऐसे है कि योगदान की बात करें तो इसमें योगदान ही मेरी वाइफ का रहा।
0: जी,
1: मेरी वाइफ अंजना शर्मा, वो टीचर हैं स्कूल में, जलंधर के APJ स्कूल में पढ़ाती हैं, जी टीचर हैं। मैं एक्टिंग नहीं करता था, मैं डायरेक्शन में था
0: जी।
1: तो उन्होंने मुझे कह के कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करते, आपका फेस भी आप कर लोगे, आप करवाते हो तो कर भी लोगे, आप एक्टिंग करो
0: जी।
1: तो उस दिन अचानक ही मुझे मैसेज आता है इंदर का
0: जी,
1: कि आप ना सर, आप ना एक ऑडिशन भेजो, एक DD नेशनल के लिए कोई शो है, उसके लिए ऑडिशन भेज दो आप
0: जी।
1: तो मैंने भी वैसे ही चलो यार भेज देते हैं, ऐसे आया मन में कि भेज देते हैं। तो मैंने वो जी ऑडिशन बना के भेज दिया। अब अगले दिन मुझे फोन आ रहा है कि आपकी सिलेक्शन कलर्स चैनल के इस शो के लिए हो गई है और आपको हीरो का फादर प्ले करना है।
0: वाह,
1: मैंने कहा यार ये तो
0: बहुत अच्छी बात हुई।
1: इसमें मैं देखता हूँ कि वो परमात्मा जो है वो क्या करवाता है
0: जी।
1: फिर मैंने ओके किया। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे मेजरमेंट्स ली, फिर मेरे आए
0: प्रोफाइल्स,
1: लुक टेस्ट हुए, ये हुआ, ऐसे करते करते जर्नी शुरू हुई। तो देखिए, मैंने डायरेक्शन की है, लेकिन काम करवाना और कैमरे के आगे करना दोनों में फर्क है
0: जी।
1: क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था एज ए एक्टर, कोई छोटे मोटे तो किए थे लेकिन एज ए एक्टर बड़ा और प्राइम टाइम पे शो, और अच्छे एक्टर, वो हीरो अंकित है उसमें और सारे अच्छे एक्टर, और उसमें जो मेरी वाइफ बनी है गुरविंदर कौर जी और वो डॉली इनको बोलते हैं। पर एक बात बताऊं, मेरा सबने बहुत साथ दिया
0: जी,
1: उन सबकी बहुत साथ था मेरे पास, इसलिए मैं इसको कर पाया। और परमात्मा की देखो है कि जिसकी वजह से लोगों ने पसंद भी किया
0: जी,
1: और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे ये करके बहुत। और हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है ट्रिमायता, इसमें सरगुन मेहता और रवि दुबे जी प्रोड्यूसर हैं, और बहुत बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छी टीम थी उनमें, हमारे क्रिएटिव थे अंकुर भाटिया जी हैं, शर्मन जैन जी हैं, प्रीत जी हैं, सब टीम इतनी अच्छी मिली ना कि इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कैसे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा माहौल मिला और बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से जर्नी चली और काम हो गया, किया भी।
0: तो मैं ये मानूं कि आप इस सफर का श्रेय अपनी धर्मपत्नी को देते
1: बिल्कुल
0: हैं?
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो उसको बोलता हूं कि भाई तुम्हारी वजह से आज मैं ये कर पाया हूं, लेकिन उसका बहुत, अंजना शर्मा है, बहुत बहुत उसका, मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूं।
0: अंजना जी, आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, और मुझे पूरी आशा है कि जब हम किसी सकारात्मक सोच से कुछ निर्णय लेते हैं और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो नतीजा है, वो भी सकारात्मक ही होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि एक परिवार ही आपस में मिलजुल के किसी भी कार्य को अर्श तक पहुंचाने के लिए काफी होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: आगे चलते हैं सर, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। बड़े स्पेक्ट्रम या बड़े स्क्रीन पर या बड़े लेवल पर और एक टॉप रेटेड TV सीरियल में काम करना कितना सुखद रहा?
1: बहुत, मैंने आपको बताया ना, बहुत मुझे, मेरे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस था, और इतना अच्छा रहा कि मेरे को तो इतने अच्छे लोग मिले, मैं बता रहा हूँ कि मुझे, और अच्छे डायरेक्टर, सब लोगों की टीम ऐसी थी कि एक फैमिली बन गई थी। क्योंकि रूटीन में मिलना होता था तो ऐसे लगता था कि हम वो फैमिली। अब वहाँ भी सेट पे आप देखो, सेट पे कोई किसी के नाम से नहीं जानता, उस करेक्टर के नाम से, मुझे वहाँ बलजीत के नाम से बुलाते थे, और जो बच्चे हैं वो कोई चाचा बोलता था,
0: कोई पापा
1: बोलता था, वो ऐसे ही चलता था। तो वो बड़ा अच्छा लगा, माहौल भी अच्छा रहा और काम करने में भी मजा आया।
0: मैंने आपके इस सीरियल को पूरी तरह से फॉलो किया है। एक सीन है जब आप कनाडा से, सीरियल में, जब आप कनाडा से बहुत साल के बाद पंजाब वापस आते हैं तो आप जमीन पर हाथ रख के फिर अपने माथे पे लगाते हैं, तो उस सीन में आपकी फीलिंग क्या थी अपने मिट्टी के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने जगह के लिए जो प्यार था वो किस तरीके का था?
1: देखिए उसकी स्टोरी ऐसी थी ना कि मुझे जो था कि मुझे वहां से भगा दिया जाता है इंडिया से
0: जी
1: 20-22 साल पहले
0: जी,
1: मेरे अपने ही भाई और उसकी उसकी बीवी ने मुझे भगा दिया होता है
0: जी,
1: और मेरा बेटा जो वो उसका टारगेट नहीं, उसका तो ये था सपना कि
0: उसका
1: सपना लक्ष्य ये था कि मैं अपने माँ बाप को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दूं
0: जी।
1: और 22-23 साल बाद जब मैं इंडिया आता हूँ उस पीरियड में, तो उस मिट्टी की जो महक है उसको मैं पहले उसको
0: सूंघ लेते हैं आप,
1: तो फिर वो वही वो एकदम से लगता है कि आप देखो 22 साल बाद बंदा अपने मुल्क में आया है, वो तो सीरियल में था तो इसलिए तो
0: नहीं, फिर भी फीलिंग तो सर वही है,
1: तो फीलिंग तो वही
0: थी, धरती में आए हैं
1: और ये चीज थी, तो उसमें आप भी थे, आपके साथ वो सीन किया था मैंने, मुझे याद है
0: जी जी,
1: तो वो बड़ा अच्छा था, अच्छा लगा।
0: आगे बढ़ते हैं, सीरियल में एक परिवार होता है जिसमें फादर होते हैं, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं और बहुत सारी स्टोरी होती है। आपने पिता का किरदार निभाया, कितना असर आपके जीवन पर और आपने लोगों के जीवन पर उस किरदार से देखा?
1: मेरे जीवन पर तो उसका असर ऐसे था कि कुछ ना, कई बार ना आप रिलेट करने लगते हो अपनी जिंदगी को उस करेक्टर के साथ
0: जी।
1: हमारे साथ होता भी ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा ये था कि उसमें हमें शुरू से दिखाया था कि हम कनाडा में रहते हैं
0: जी,
1: तो ये चीज थी। लेकिन हमारे साथ जैसे उसमें जो मेरी वाइफ बनी है उनके साथ कैसे हुआ, तो उसको हम अपने अपनी फैमिली के साथ रिलेट करते थे कि हमारे साथ फैमिली में कुछ चीजें ऐसी ही होती हैं,
0: तो वो दर्द महसूस
1: होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है सर वो, तो वो चीज आप रिलेट कर लेते हो। और कई बार तो कई बार परमात्मा आपको वैसा ही दिखाता है कि जो तुम प्ले करके आओ वो तुम्हारे साथ घर में भी ऐसा होता है कई बार अमूमन, तो वो चीज रिलेट कहीं ना कहीं हो जाती है सर।
0: तो लोगों का अपार प्यार मिला इस टीवी सीरियल को, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी अपने आप को किसी न किसी दृश्य में शायद महसूस करते होंगे।
1: हो सकता है क्योंकि बंदे जुड़ते ही तब हैं जब वो अपने आप को उसमें महसूस इन्वॉल्व होते हैं उस करेक्टर के साथ। अब आप देखो जो सीरियल बड़े हिट जा रहे हैं वो इसीलिए हिट जा रहे हैं कि लोग उनमें अपनी पिक्चर देखने लग जाते हैं,
0: अपने आप को देखते हैं
1: कि हाँ ये तो मेरे साथ भी ऐसे होता है,
0: ये तो मेरी ही कहानी है।
1: वो होती है, वो चीज तो है सर।
0: एक और बात जानना चाहता हूँ इस कलर्स पर, जो सीरियल जुनूनियत अभी अभी संपन्न हुआ, कोई ऐसा क्षण जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं?
1: सर ऐसे देखो क्षण तो ऐसे बहुत होते हैं, जब आप काम करते हो तो बहुत से ऐसे चीजें आती हैं सामने, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन एक ऐसा माहौल ऐसा बन जाता है ना जब आप एक टेली शॉप करते हो तो उसमें आपको अपना परिवार ही लगता है सब चीजें। अब मुझे याद है कि जब हमारी ये रैप अप पार्टी थी
0: जी,
1: तो उसमें मोस्टली जो करेक्टर थे वो बड़े उदास थे
0: क्योंकि
1: अचानक बंद हो गया,
0: क्योंकि ये परिवार जो है अलग हो रहा है
1: और अचानक बंद हो गया, तो मैं देख रहा था कि मैं खुद भी बड़ा इमोशनल हो गया था उस दिन। सब लोग बहुत इमोशनल थे कि ये एकदम से बंद हो गया और इतना बढ़िया बॉन्डिंग चल रही थी, इतना क्योंकि देखो सर हम महीने में कितने दिन तो हम इकट्ठे रहते थे, 12 दिन इकट्ठे रहना और वही फैमिली माहौल, वही जब आना भी आपने तो सेट पे आना किसी ने हाँ जी चाचा जी पापा बलजीत जी ऐसे जो सबके साथ ऐसे, तो वो थोड़ा सा उस वक्त हुआ, लेकिन चलो पार्ट ऑफ लाइफ,
0: ये जिंदगी है,
1: जिंदगी है, इसमें क्या कह सकते हैं,
0: ये जिंदगी है और ये जिंदगी आगे ऐसे ही चलती रहेंगी। अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, खास करके जो अभिनय के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक खास मैसेज और साथ में उन सभी दर्शकों को आप शुक्रिया धन्यवाद कैसे करेंगे?
1: सर ऐसे है कि चलो मैसेज मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ जी, चल रहा हूँ इसमें, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, रोज सीख रहा हूँ। और मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि आदमी को, हमारी लाइन ऐसी है कि इसमें रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अब मुझे, अब मैं जब स्क्रीन पे मैंने देखा कि मैं ये चीज को इससे बढ़िया कर सकता था, अब मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ
0: जी।
1: ये चीजें है ना कि आप अपने आप को जब देखते तो आपको आपके अंदर से आवाज आती है, नहीं ये ठीक नहीं है, ये बढ़िया हो सकता था, वो आपको पता चल जाता है, आप उस पर वर्क करो
0: ताकि अगली बार
1: उससे भी अच्छा हो सके। तो ये चीजें तो होनी ही चाहिए। और बाकी यहाँ आप सबसे, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और दर्शकों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने अपना एक गोल सेट करो, उस गोल को अचीव करने के लिए पूरे एफर्ट करो, और परमात्मा आपको वो अचीव करवाएगा ही करवाएगा, जरूर करवाएगा। और मैं यहाँ आया हूँ अम्बाला में आपके यहाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपसे मुलाकात हुई, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और अब तो मुझे लगता है कि मैं जितनी बार भी निकलूंगा यहाँ से आपके पास तो होके ही जाऊंगा।
0: हमारी खुशियों से भी, और आपने इसके साथ ही मेरे आखिरी सवाल का जवाब भी दिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आपका शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमारे स्टूडियो को पावन किया, आपने अपने दिल की बात हमारे साथ साझा की जो हम श्रोताओं तक पहुंचा सके, और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूं इजाजत, श्रोताओं को छोड़ देता हूं विशाल सर के एक और पसंदीदा गाने के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: नमस्कार सर, पावन तो आपने मुझे कर दिया आपने यहां बुला के, तो इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहां बुलाया, शुक्रिया, थैंक यू।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिचर्चा एपिसोड 3। हमारे आज के मेहमान थे विशाल शर्मा डार्ली, एडिटिंग व रिकॉर्डिंग दीपक कश्यप, प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: dala çıkmıyor. Ek hey Lata Mangeshkar, ek hey Radio Mitista, हम सफर जिंदगी का
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अंबाला केंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा
1: गीत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। शब्द नेक कमाईआं ते इस शब्द नूं आवाज़ दित्ती है सिंगर बॉबी सिंह जी ने, ते लिखिआ सुरिंदर सरताज जी ने, ते इस शब्द की वीडियो जे एस कलवाना जी ने की है। इस वीडियो च काम करन वाले कलाकार पुनीत खन्ना जी, हरदयाल चंद जी, इंदर राजोसन जी, निर्वैर चहल जी ते होर कलाकार। ते इस शब्द नूं प्रोड्यूस किया है हरबंस लाल खन्ना जी ने, ते तुसीं इस शब्द की वीडियो भी देख सकते हो नानक गुरबाणी 20 यूट्यूब चैनल पर जाके। शब्द का आनंद माणो, सब नूं शेयर करो। थैंक यू सो मच।

मन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: ताजमहल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
4: दिलों में प्यार का एहसास जगा देता है, ये वो धागा है जो दूरियों को मिटा देता है। हम यहाँ सिर्फ गाने बजाने नहीं आते, हमारा मंच तो दिलों को दिलों से मिला देता है। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर, जो आपके हमसफर है जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी फरमाइश। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी।
5: और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। मेरे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार। भारत जी, आज का मौसम और हमारे श्रोताओं का मूड दोनों ही बड़े कमाल के लग रहे हैं।
4: बिल्कुल कृष्णा, आज का मौसम इतना गर्म है और इतनी गर्म हवाएं चल रही है, पर फिर भी जो हमारी कोशिश है, जो हमारे शौक होते हैं, वो कभी कम नहीं होते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर हफ्ते का वो दिन आ ही गया है जिसका हमें सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूं कि जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं वो इससे महज एक गानों का प्रोग्राम ना समझे।
5: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भारत जी, हम यहाँ केवल आपकी फरमाइशें नहीं सुनाते बल्कि हम तो दिलों को दिलों से जोड़ते हैं। ये सिर्फ आपके संदेश या संगीत की धुनें ही नहीं है।
4: बिल्कुल सही, सच कहें तो आपकी हर फरमाइश में छुपा एक इकरार होता है, इसमें आपका अनमोल स्नेह और बेपनाह प्यार होता है। पल पल जो कटता है आपकी यादों के साए में, ये वो मीठा सा खूबसूरत सा इंतजार होता है। हमारे लिए आपकी फरमाइश आपका वही प्यार है और वो हफ्ते भर का मीठा सा इंतजार है जो आप हमसे जुड़ने के लिए करते हैं। आपके इसी इंतजार को खूबसूरत बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं सदाबहार गीतों का एक बेहतरीन गुलदस्ता।
5: तो फिर देर किस बात की, आप अपनी धड़कनों को थामिए, चाय की चुस्कियां लीजिए और डूब जाइए शुरू के इस समुन्दर में है। भारत जी और मेरे यानी कृष्णा के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। आइए सुनते हैं आज की पहली फरमाइश, सीधे आप सभी के नाम। आज की पहली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव कुम्हार खेड़ा सहारनपुर से, भेजने वाले श्रोता है सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आराधना का गीत। गीत के बोल हैं, बागों में बहार है, और गीत को अपनी आवाज से सवारा है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। तो लीजिए पेश है इन सभी की पसंद का ये प्यारा सा नगमा।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: आप श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से, भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल। ये सुनना चाहते हैं फिल्म जिंदगी और तूफान का गीत। गीत के बोल है, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। इस गीत को आवाज दी है मुकेश जी ने। और रवि कुमार राहुल के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशबद सिंह राहुल। आइए प्रस्तुत है इनका ये फरमाइशी गीत।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है अंबाला कैंट से। भेजने वाली श्रोता हैं उषा कौशल जी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म मधुमती का गीत। गीत के बोल हैं सुहाना सफर और ये मौसम हसी, जिसे अपनी आवाज से सवारा है मुकेश जी ने। पेश है उनकी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है नवी मुंबई से भेजने वाले श्रोता है सोनिया शर्मा और ये है सीबीडी बेलापुर से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म छाया से गीत। गीत के बोल है इतना ना मुझसे तू प्यार बड़ा। आइए प्रस्तुत है सोनिया शर्मा जी का ये पसंदीदा गीत।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं विनय मोहन खारवन। ये सुनना चाहते हैं फिल्म दो चोर से गीत। गीत के बोल हैं चाहे रहो दूर चाहे रहो पास। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। विनय मोहन खारवन के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी। लीजिए पेश है इन सभी की पसंद का ये गीत।

आप सभी की नज़र एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से भेजने वाले श्रोता है पी एस नाहवकर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म कोहिनूर से गीत, गीत के बोल है दिल में बजी प्यार की शहनाइयां। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। पी एस नाहवकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर और साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर। और ये धन्यवाद भी करते हैं आप सभी श्रोताओं का, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें फरमाइशें भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके दिलों को हम दूसरे श्रोताओं के साथ जोड़ दें। तो आइए प्रस्तुत है इनका ये पसंदीदा नगमा।

से अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव मंदेवर यमुनानगर से, भेजने वाले श्रोता हैं रणबीर, जगमाल, फूल सिंह, शमशेद, अंगराज और विकास पंजेता। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हीर रांझा का गीत। गीत के बोल हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इस गीत को अपनी आवाज से संवारा है मोहम्मद रफी जी ने। तो लीजिए पेश है इन सभी की फरमाइश का ये पसंदीदा गीत।

0: नहीं।
1: आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है चंद्रपुरी अम्बाला कैंट से भेजने वाले श्रोता है मदन गोपाल सैनी जी, ये सुनना चाहते हैं फिल्म इजाजत से गीत। गीत के बोल है खाली हाथ शाम आई है। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले जी ने। आइए, प्रस्तुत है मदन गोपाल सैनी जी का ये पसंदीदा नगमा।

पेश अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव बो अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं राहुल अलियान। ये सुनना चाहते हैं फिल्म राजा और रंग का गीत। गीत के बोल हैं ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, जिसे अपने मधुर आवाज से संवारा है मोहम्मद रफी ने। तो लीजिए प्रस्तुत है उनकी पसंद का ये मीठा सा गीत।

आपको सुनाते हैं श्रोताओं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला कैंट से भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधु। बंशीलाल संधु के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधु, जसबीर सिंह संधु, वरनीत कौर, पवनीत कौर और पूरा संधु परिवार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म इज्जत से गीत। गीत के बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने और आइए सुनते हैं बंशीलाल संधु और उनके परिवार का ये पसंदीदा नगमा।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव करधान अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं संदीप शर्मा। ये सुनना चाहते हैं फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली का गीत। गीत के बोल हैं, ऐसे तड़पूंगी जैसे जल बिन मछली, जिसे अपनी मधुर आवाज से संवारा है लता मंगेशकर जी ने। पेश है इनका ये पसंदीदा मधुर सा गीत।

tu pieši ab se bikini za ekor formaish, jo hamar pas ai hai dialbag amala kense bhejne wale shrota hain Anil ji. ये सुनना चाहते फिल्म जीत का गीत, गीत के बोल हैं शीशी भरी गुलाब की, जिसे अपनी आवाज से संवारा है लता मंगेशकर जी ने, तो पेश है उनकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। और अब हम लेते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश जो हमारे पास आई है हसीमारा वेस्ट बंगाल से, और भेजने वाले श्रोता है ममता राव। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है श्रीनिवास राव और आध्या। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म खामोशी से गीत, गीत के बोल है तुम पुकार लो। इस गीत को आवाज दी है हेमंत कुमार साहब ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा गीत, और इसके साथ ही आप हमें दीजिए इजाजत। मैं और कृष्णा हम आपके लिए हर शुक्रवार को लाते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। उम्मीद करते हैं कि अगले शुक्रवार को आपसे आपके नई फरमाइशों के साथ हम रूबरू होंगे और आप सभी श्रोताओं को वो गीत सुनाएंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है,

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

जी हाँ, सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ भारत सोपुरी और सभी श्रोताओं को जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी कुछ क्षणों में शुरू होने जा रहा है कार्यक्रम राम राम हरियाणा, जो लाइव होता है 4 बजे से 5 बजे तक। और इसमें हम बात करते हैं गांव की, शहर की, कस्बे की। अगर आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एक नंबर पर जो आपको सीधा इस कार्यक्रम में ले आता है। अगर आपको जिंदगी में आपने कोई उत्कृष्ट कार्य किया है उसके बारे में बताना चाहते हैं, या अगर आपके आसपास कोई कमी है, आप कॉल कर सकते हैं। हम आपकी बात को हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों तक भी पहुंचा सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को लाइव सुनते हैं अम्बाला में, चरखी दादरी में, नारनौल में, करनाल में, यमुनानगर में, पेहवा में, और हरियाणा के अधिकतर सामुदायिक रेडियो इस कार्यक्रम को लाइव करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, अपनी जो जानकारी है वो हम तक पहुंचाएंगे। हमारा इस कार्यक्रम का नंबर है 8816904904। नंबर एक बार फिर 8816904904। बने रहिए हमारे साथ, कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है कार्यक्रम राम राम हरियाणा।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सार्य ने राम राम और मैं भारत सोपोरी एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता अम्बाला से प्रसारित होने वाले सामुदायिक रेडियो से आपके समक्ष हूँ। और पटल पर हमारे साथ गुरविंदर जी है मैडम और आज के मेहमान, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम में जिसका नाम है राम राम हरियाणा। और आप सभी हरियाणा की श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन भी इस कार्यक्रम में, और खास करके सोशल मीडिया पर हमारे इस कार्यक्रम को देश विदेश में सुनने वाले सभी हरियाणवियों और सारे हमारे भारतवासियों का स्वागत और अभिनंदन। ये कार्यक्रम आप सुनते हैं और देखते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और साथ में आप इस आवाज को सुनते हैं लाइव हमारे हरियाणा के सामुदायिक रेडियोज पर, जैसे अम्बाला से एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, चरखी दादरी से अपना रेडियो, नारनौल से रेडियो अरावली, रेडियो गोंदर करनाल से, और रेडियो एफएम भारती पेहोवा से, और यमुनानगर से रेडियो सांझा, और भी कई रेडियो से, और रेडियो एनजीएफ पलवल भी हमारे साथ आवाज के माध्यम से जुड़े हैं और वहां भी ये आवाज लाइव होती है सामुदायिक रेडियोज पर। तो हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो भी हम बात करते हैं वो हम बहुत ही दिल से करते हैं और जिम्मेदारी से करते हैं, ताकि श्रोताओं तक जो आवाज पहुंचे, जो बात पहुंचे, वो साफ सुथरी आवाज पहुंचे, बिना किसी लाग लपेट के पहुंचे और सही बात पहुंचे, ताकि हमारी जो साख अपने श्रोताओं के बीच में है वो भी बरकरार रहे, और आने वाले दिनों में हम श्रोताओं को बहुत सारी जानकारी से अवगत कराएं और बहुत सारे ग्रामवासियों को अवगत कराएं, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में ज़्यादातर ग्रामवासी और ग्राम पंचायतें जुड़ी रहती हैं और जो हमारे धरातल के साथ जुड़ी है। तो एक बार पुनः सभी का स्वागत और अभिनंदन। अभी हमारे साथ आज प्रीतम जी नहीं है, हमारे साथ आज डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी अभी नहीं है, हमारे साथ गुरविंदर जी है और साथ में मैडम और आज के मेहमान। आप सभी श्रोताओं को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें कॉल करना चाहते हैं, और अगर आपने जीवन में कुछ उत्कृष्ट कार्य किया है उसके बारे में बताना चाहते हैं, या आसपास में कोई कमी है जो आप हरियाणा सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, या आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 8816-904-904। नंबर एक बार फिर 8816-904-904। आज है 3 जून 2026 बुधवार, अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीय 2083 विक्रम संवत। और आप सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि आज विश्व साइकिल दिवस भी है। साइकिल हमारे व्यायाम के साथ जुड़ा है और हमें जब साइकिल चलाने का मौका मिलता बचपन में था तो हम एंजॉय करते थे, और आज के दिनों में अगर हम साइकिल चलाते हैं तो हम उसको व्यायाम के साथ जोड़ते हैं, ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे, एकदम बढ़िया रहे, और हमारा रक्त संचार जो है वो बना रहे। और एनजीएफ पलवल से जितेश जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। और आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, जो मेरे पास लिखा आया है, ग्राम पंचायत बील छप्पर यमुनानगर से, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम में। और मैं जितेश जी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, आप कैसे हैं? जितेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है शायद।
1: राम राम हरियाणा के सभी श्रोताओं को रेडियो एनजीएफ परिवार की तरफ से प्यार भरी राम राम, प्यार भरी नमस्कार। जो भी श्रोताएं हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत जी, मैं एकदम अच्छा हूँ, और आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारा सारा राम राम हरियाणा परिवार अच्छा और स्वस्थ होगा। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर यमुनानगर के बिलासपुर ब्लॉक से भील छप्पर गांव के सरपंच साहब हमारे पास साथ जुड़े हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आज जैसे कि भारत जी ने बताया, हमारे जो कार्यक्रम के संचालक है भारत जी अम्बाला रेडियो से, उन्होंने बताया कि आज साइकिल दिवस भी है, तो साइकिल को लेकर भी हम थोड़ा बात करेंगे गांव के विकास कार्यों की। और हम अपने श्रोताओं को मुख्य रूप से बताना चाहेंगे कि आप हमारे साथ कॉल करके आप हरियाणा के किसी भी कस्बे, किसी भी शहर, किसी भी सिटी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से। 88 16 904 904 हमारा नंबर है, जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें हमें अपने सलाह सुझाव अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर भेजें। रेडियो एनजीएफ 90.4 की तरफ से मैं जितेश रोज की तरह आज आपके साथ जुड़ा हूं। सर एक छोटी सी बात आज हम करना चाहेंगे, बात करेंगे सरपंच साहब से, गुरविंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर से आज मैं अपने सभी हरियाणा वासियों को बता दूं कि राम राम हरियाणा जो प्लेटफॉर्म कैंपेन चलाया जा रहा है, ये अपना जिला पंचायत विकास संस्थान है नीलो केड़ी, उसके द्वारा चलाया जा रहा है, और इसमें कोशिश की जा रही है कि हमारे जितने भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, अलग अलग जिले के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो सारे ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, ज्यादातर रेडियो स्टेशन राम राम हरियाणा का कैंपेन है। कभी कभार सप्ते में एक या दो दिन ऐसा होता है कि कोई टीम कहीं अपनी व्यस्तता, अपने कार्यक्रम या फिर अपने किसी कैंपेन की वजह से नहीं जुड़ पाती, लेकिन राम राम हरियाणा के सारे सहयोग है और उनका मुख्य सहयोग भी है, और हमारा सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप हरियाणा में कहीं भी बैठे हुए हैं, कोशिश की जाएगी आपके जनप्रतिनिधि, आपके ग्राम सचिव, आपके नोडल अधिकारी, सबको साथ जोड़कर ज्यादा से ज्यादा आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। और पीछे सर हमने देखा भी है, जैसे हमारे यहाँ से ब्रिज कोच की परिक्रमा में वो राजवीर सिंह जी हमारे लिसनर जुड़े थे, तो उसमें अगले दिन गुरविंदर जी ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ के जो नोडल अधिकारी थे, हमारे एसडीएम साहब थे, उनको अपने साथ जोड़ा और उनसे बातचीत भी की। फिर मैंने अगले दिन उन लोगों से टाई अप किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई अब हमारे यहाँ ब्रिज कोच की जो परिक्रमा चली हुई है उसमें लाइट जो है पुल के ऊपर जो लाइट्स हैं वो चल गई। तो हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही रहती है कि हरियाणा के लोगों को अपने साथ जोड़कर उनकी समस्याओं को सुना जाए, जाना जाए और ज्यादा से ज्यादा उनका समाधान किया जाए। मंच का संचालन भारत जी की तरफ सौंपते हुए भारत जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेश जी, और आप जब अपनी जानकारी देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारे हरियाणा प्रदेश का एक हिस्सा है। और साथ में कुछ कमेंट्स भी यहां लेना चाहूंगा, और हमारे साथ रेडियो गोंदर करनाल भी आवाज के माध्यम से जुड़े, और मुझे उम्मीद है कि हमारी आवाज डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी के पास पहुंच रही है और साथ में प्रीतम जी के पास भी पहुंच रहे हैं। उनको हम आज मिस कर रहे हैं, उनके स्टूडियो का जो बैनर है वो हम मिस कर रहे हैं, पर प्रीतम जी हमें इस समय देख रहे हैं लाइव, और साथ में प्रीतम जी लिख रहे हैं राम राम हरियाणा, साथ में सुनील शर्मा जी भी राम राम हरियाणा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरविंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हर दिन के लिए आप हमें हमारे साथ अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों को जोड़ते हैं, और आप आराम से हमारे साथ बने रहते हैं, और आपकी पेशेंस की हम दाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। सबसे पहले मैं अब मुड़ना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान ग्राम पंचायत बील छप्पर यमुनानगर से। मैं सर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं, और आप अपने परिचय के साथ शुरुआत करें, और आज आप हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं। हम पूरी तरह से अपनी आवाज को विराम देंगे, हम आपकी आवाज में आपके गाँव की गाथा, अपने गाँव की जो तरक्की है वो सुनना चाहेंगे, आपके गाँव में कोई अच्छी बात आपने की, अच्छा कार्य किया है उसके बारे में सुनना चाहेंगे, कोई कमी है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपसे और विशेष प्रश्न करेंगे, और आपका एक बार फिर पुनः स्वागत। आज के मेहमान ग्राम पंचायत बील छप्पर यमुनानगर से, कृपया आप अपने परिचय से शुरू करें।
2: सर नमस्कार।
0: नमस्कार
2: पूरी टीम को, आपका स्वागत है सर, नमस्कार है
0: जी,
2: और सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र चौहान जी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं उनको। उनके व्यवहार के बारे में जो है सभी चर्चित हैं, उनके व्यवहार के बारे में सबको पता है। भगवान के सौभाग्य से जो है सुभाष कुलसाना जी के कोठी पे अभी 15-20 दिन पहले ही उनसे मुलाकात हुई, और मिलके बहुत अच्छा लगा, उनका व्यवहार इतना अच्छा लगा कि आनंद आया। तो नमस्कार सर, पूरी टीम को नमस्कार है, पूरे हरियाणा को नमस्कार है।
3: नमस्ते शास्त्री जी, नमस्ते।
2: सर 2023 में जब सरपंच बने तो ये था कि गांव में जो कार्य नहीं हो पाए हैं उनको करने का भरसक प्रयास करेंगे, और उस लाइन पे चले भी, आपके आशीर्वाद से जो है कार्य किए भी हैं। अपने गांव में एक शमशान घाट का बहुत बड़ा मुद्दा था, जो जब से देश आजाद हुआ था ये मुद्दा ऐसे कैसा ही था हमारे गांव में, हमारे बिलासपुर पास लगता है, उस शमशान घाट के अंदर अपना संस्कार, जो कोई मर जाता था तो उसका किया करते थे। तो एक वो मुहिम गांव वालों के माध्यम से चलाई कि अपने गांव में ही ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे हमें दूसरे के यहाँ ना जाना पड़े, और पूरे गांव के माध्यम से उनके प्रयास से, पंचायत के प्रयास से जो है वो कार्य सफल हो पाया और आज वहां के लिए रास्ता बन चुका है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। उसके बाद गांव में क्या था कि आने के लिए सड़क की सुविधा कम थी, सड़क तो थी लेकिन वो

0: के माध्यम से हमारे साथ जुड़े थे। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी जो शुरुआती जो जो बात थी वो आपने सुनी होगी, और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे। संजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो गांव है वो कहाँ पर है, क्योंकि अगर यमुनानगर के बारे में मुझे जानकारी है तो थाना छप्पर के बारे में जानकारी है, तो थाना छप्पर से आपका बील छप्पर जो है वो कितना दूर है और किस दिशा में आपका गांव है?
1: और ये इनको ये लग रहा है कि छप्पर छप्पर तो ये इस गांव के नाम में भी कड़ी लवे धो रही होंगे, एक दूसरे के टेकण पाओगे।
2: जी जी सर, सर मैं बता दूं, गांव जो है अपना पीडब्ल्यू जी अपना रोड बना है, जो हाईवे बना है अपना थाना छप्पर वाला
0: जी,
2: वहां के वहां से निकल कर हम कपाल मोचन की तरफ चलते हैं। सर कपाल मोचन आपने जरूर सुना होगा।
0: जी जी जी जी,
2: तो मेरा कपाल मोचन से मेरे गांव 2 किलोमीटर पड़ता है सर, उससे पहले पड़ता है, बाद में कपाल मोचन आता है आदि बद्रीश।
0: जी जी धन्यवाद।
2: आजकल जो है
1: शास्त्री जी, कितने वोट का गांव है?
2: सर मेरा 1725 गांव वोट का गांव है सर, और मेरे पास सर 2 गांव पड़ते हैं, मैं इसमें एक गांव आम वाला भी शामिल है सर।
1: आपकी पंचायत में ही?
2: जी सर।
1: आम वाला?
2: आम वाला भी इसी में शामिल है सर।
1: चलिए, तो आपने कुछ चीजें तो बता दी भाई, मैं आपने ये काम किया उससे आपको बड़ी संतुष्टि मिली। आपसे पूर्व कौन था सरपंच?
2: सर मेरे से पहले एक रमनीत कौर सरपंच है, जो ऐसी कैंडिडेट रही है जी। वो उन्होंने जो है कोरोना दौरान उनका जो है शासन खत्म हुआ 2022 में।
1: चलिए, आप से पहले जो सरपंच रहे हैं गांव के, ऐसे कितने लोग अभी जीवित हैं गांव में जिनके हाथ में पहला चौधर रैली?
2: सर तकरीबन जो है 3 के आसपास हैं।
1: 3 लोग हैं?
2: हाँ जी।
1: तो कभी इनके साथ भी बैठ के बात करी आपने, चौधर आए पीछे भी कोई कोई न, कोई बात इन पता भी सीख लेने के तजुर्बे बताए भाई, पुराने लोगों से सीखना हमेशा। जी
2: हाँ जी हाँ जी, ये तो सर होता रहता है गांव में, जब भी कोई एक सार्वजनिक कोई मीटिंग होती है तो उनको बुलावा दिया जाता है और वो आते भी हैं सर, उनसे भी सीखने को मिलता है।
1: ग्राम सभा की क्या स्थिति है? ग्राम सभा आपके यहाँ वास्तव में धरातल पे हो पाती है क्या, जैसा हम चाहते हैं, सरकार चाहती है, कानून चाहता है, संविधान में जिस तरह से ग्राम सभा को लेकर प्रावधान है, क्या आपके गांव में उस तरह से हम ग्राम सभा आयोजित कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही स्थिति बतानी है। एक तो अच्छे पद देना, माटी देना, न बकाना, जो कुछ है वो ही बताना।
2: ठीक है सर। इसमें सर ऐसा हुआ कि जब हम सरपंच बने थे तो ग्राम सभा के बारे में पहले तो नहीं पता था, लेकिन ग्राम सभा में हमने ये था कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ताकि वो अपनी बात बताएं, अपने मन की बात बताएं, जो बात प्रशासन तक पहुंच सके
1: जी,
2: उसके लिए हमने अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से जो है अपना एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और उसमें गाँव के लोग भी जोड़े और पूरी पंचायत को भी जोड़ा, और अपने वार्ड मेंबर के हिसाब से प्रत्येक मेंबर को ये कहा कि आपने अपने वार्ड में सूचना देनी है कि हमारे यहाँ अफसर आएंगे और अपनी बात को, जो भी कोई बात है, कोई दिक्कत परेशानी है, वो उस ग्राम सभा के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचानी।
1: ओके।
2: उसके बाद सर हमारा दूसरा उसमें ये रहा कि हमने मुनादी करा दी गांव के अंदर, कल जो है हमारे प्रशासनिक आदमी आएंगे, दफ्तर से आदमी आएंगे और आपने आना है, लेकिन सर उसका धरातल पे उतना रिजल्ट देखने को नहीं मिला। गाँव में 12 की आबादी है तो हमारे पास 100 भी आदमी नहीं पहुंच पाए, वो भी
1: साढ़े तीन वर्ष हो गए। इसमें कितनी ग्राम सभाएं कर पाए आप?
2: सर हम साल में 3 ग्राम सभाएं करते हैं सर, साल में 3 किए हमने, मतलब हमारी
1: 9 तो कम से कम हो गई ना।
2: हाँ जी हाँ जी सर।
1: तो 9 में से कोई एक ऐसी ग्राम सभा है जिसमें जो सरकार चाहती है उतने लोग आए हो, जोर ला के मनादी करके बुला के बड़ो के?
2: अब सर गत महीनों में सरकार की तरफ से ये बात आई थी कि हमने अपना जो 40% का जो है वो कॉलम पूरा करके ही विकास कार्य सरकार तक पहुंचाने, तो पहली जब ग्राम सभा हुई सर उसमें जो है हमारे 20% आदमी भी नहीं आ पाए, दूसरी हमने की उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, और तीसरी जब हमने की तो वो घर घर जाके लोगों को बताया कि आप जब तक आप नहीं आओगे गाँव का विकास नहीं हो पाएगा।
1: ओके।
2: तो पूरा भरसक प्रयास किया हमने जिसमें हमारे कॉलम से भी ऊपर आदमी इकट्ठा हो गए, ये हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और उसमें हम सफल हो पाए।
1: मतलब तीसरी बारी में 40% ज्यादा लोग आ गए क्या?
2: हाँ जी हाँ जी।

0: तो दो मिटा दिए तुमने,
1: हाँ जी,
0: गजब
1: बहुत
0: कर दिया।
1: मतलब घर घर जाके सर, हमारी पंचायत ने घर घर जाके रिक्वेस्ट की, उनको बताया कि आपके बिना कार्य नहीं हो पाएंगे, पंचायत आपके बिना कार्य कर ही नहीं पाएगी।
0: हरियाणा के बहुत सारे सरपंचों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए ये संजीव जी की जो कहानी है, इनका जो किस्सा है, इनका जो अनुभव है, ये अपने आप में सीखने वाला है भारत जी, कि जो सरकार ने नॉर्म तय किए हैं वो जटिल हैं थोड़े से, और जमीन पे हकीकत में मुश्किल हो रहा है लोगों को बुला पाना, ग्राम सभा में उतने लोगों को जोड़ना, लेकिन शास्त्री जी अगर जोड़ पाए हैं तो ये वास्तव में कमाल की बात है। दोस्तों, राम राम हरियाणा सुन और देख रहे हैं आप, मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान, और हरियाणा के विभिन्न सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के जो श्रोता मित्र हैं वो हमको इस समय देख और सुन पा रहे हैं। राम राम हरियाणा पर हम जो बात कर रहे हैं, और अगले समझ लीजिए 40 मिनट और हम जो आपसे बात करने वाले हैं हर दिन की तरह, इस संवाद में, इस चर्चा में आप यानी हमारे श्रोता मित्र, चाहे वो अंबाला के हों, दादरी के हों, नारनौल के हों, करनाल में गोंदर और आसपास के क्षेत्र के हों, सभी मित्र, हाँ एफएम भारती भी जुड़ा है, पिहवा और कुरुक्षेत्र के क्यों ना हो, वे सब फोन करके हमारी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। एक सरपंच ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोरम पूरा कर लिया तीसरी बारी में, अधिकांश लोग शास्त्री जी सच बात है ना, हाथ खड़े कर
1: हाँ जी, हाँ जी, बड़ा मुश्किल कार्य है सर ये।
0: लाए ना, बहुत बड़ी बात है। आज प्रीतम जी दिखाई नहीं दे,
2: जी, प्रीतम जी ने आज अवकाश लिया है और वो प्रीतम जी हमें कहीं दूर से ऑनलाइन देख रहे हैं और उन्होंने ऑनलाइन ही हमें राम राम हरियाणा भी भेजा है और उम्मीद करते हैं कि उनका दिल भी मन कर रहा होगा कि वो हमारे साथ जुड़े, चाहे आवाज़ के माध्यम से ही जुड़ें। तो मैं प्रीतम जी को अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम कॉल करके भी हमसे वो जुड़ सकते हैं। जी वीरेंद्र सर,
0: जितेश जी अपना सवाल कर लें, और
3: जी
0: रेडियो ग्रामोदय से मैं ये कहूंगा स्टूडियो से कि भाई अपना फोन नंबर जो है उसको ऑन रखें, और किसी श्रोता का, किसी मित्र का फोन आता है तो वो हमें सीधे उसके साथ कनेक्ट करें ताकि इस बातचीत को उपयोगी बनाया जा सके। मैं संयोग से आज चंडीगढ़ आया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश अध्यक्ष बनी है डॉक्टर अर्चना गुप्ता,
2: जी
0: उनका कार्यभार संभालने का कार्यक्रम था। अभी मैं रास्ते में हूं और रास्ते में चलते चलते मैं भूल गया था भारत जी आज के राम राम हरियाणा में भी जाना है। अचानक मुझे सौरभ ने जब लिंक भेजा तो याद आया, और तेरी ये कैसे हो गया, छूट कैसे गया, तो मैंने सरे राह चलते चलते जीरकपुर वाला जो फ्लाईओवर है ना,
2: जी
0: हम निकलते हैं जब से बाहर हरियाणा की तरफ, फ्लाईओवर के ऊपर था, उसी समय मुझे वो मैसेज भी मिला, और मैंने फोन ऑन किया था तो मेरे पुराने सहकर्मी, मेरे वरिष्ठ साथी मनमोहन गुप्ता मोनी जी, दैनिक ट्रिब्यून में वरिष्ठ साथी रहे हमारे, और उनका निवास रास्ते में पड़ रहा था और उनकी कॉल भी आई हुई थी, तो मैंने गुप्ता जी को फोन लगाया कि क्या हम आपके पास चाय पी सकते हैं। तो मेरे दो काम इस बहाने से हो गए, एक बरसों बाद,
2: मुलाकात हो
0: बरसों से
2: गई।
0: हम जो कोशिश कर रहे थे कि एक दिन गुप्ता जी के यहाँ वार्तालाप उनके सामने बैठ के चाय पे करेंगे, ये हो गया, इनके घर आना हो गया, वहीं से मैं इनको, इनके सारे परिवार को मैंने तंग कर दिया, शायद विश्राम कर रहे होंगे। और दूसरा ये कि ये जो मेरा काम छूट रहा था, राम राम हरियाणा होना था, संजीव जी के भी इस बहाने से दोबारा से दर्शन होने थे जल्दी जल्दी, ये दोनों काम हो गए। अः जितेश जी हमारे साथ हैं, जितेश जी का सवाल आप ले लें शास्त्री जी, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी जितेश जी, जितेश जी आपका प्रश्न, आपके प्रश्न का हम इंतजार कर रहे हैं। जितेश जी आपका प्रश्न आए,
4: बिल्कुल सर, राम राम हरियाणा के प्लेटफॉर्म पर पहले भी बात हुई, सरपंच साहब एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे। मेरे साथ थोड़ा 5 मिनट नेटवर्क का इशू था तो पीछे की चीजें शायद मैं थोड़ा सुन नहीं पाया। शमशान घाट की बात सर आपने हमारे साथ की, पीछे भी हम एपिसोड में एक सरपंच साहब थे हमारे साथ तो उनसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि बहुत परेशानी थी और मुझे लगा कि मुझे मेरे कार्यकाल में ये काम पूरा ही करना है और मुझे ये काम करके बड़ी आत्मसंतुष्टि मिली। तो कहीं ना कहीं कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करके सच में ही मन को बहुत अच्छा लगता है। तो शमशान घाट की हम बात करेंगे कि सर आपके गांव में भी अलग अलग शमशान घाट है या फिर सारे गांव के लिए एक ही शमशान घाट है? क्योंकि पीछे एक सरपंच साहब से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि हमारे गांव में अलग अलग सरपंच शमशान घाट है, तो वीरेंद्र चौहान जी ने उसपे बोला भी था कि भाई इस पर हमें काम करने की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या उसकी जाति, क्या उसका धर्म, और ये जागरूकता तभी आ सकती है जब हम खुद से लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे। तो मैं बिलासपुर साइड और अपने जिला यमुनानगर की बारे में थोड़ा राम राम हरियाणा कैंपेन के माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को ये बताना चाहेंगे कि आपके गांवों में भी अलग अलग शमशान घाट है या पूरे एक गांव के लिए एक ही शमशान घाट।
1: सर हाँ जी, सर गांव में शमशान घाट जो नंबर है शमशान घाट के वो अलग अलग है लेकिन स्थान एक ही है।
4: जी
1: जी, तो ये तो बात सर आपने बिल्कुल सही कही है कि जिस भी गांव में देखें तो ये सुनने को मिलता है कि सभी के शमशान घाट अलग अलग हैं, जबकि ये स्थान एक ही जगह होना चाहिए, सबका कॉमन होना चाहिए सर। तो कागजों के हिसाब से अगर
0: मैं इसमें एक बार फिर से ये कहते हुए दखल देना चाहूंगा कि मरते वक्त या मरने के बाद अंतिम यात्रा तो कम से कम गांव के सब लोगों की एक जगह पे जानी चाहिए, और दोहराऊंगा एक बार फिर से, बीच में दखल दे रहा हूं जितेश जी आपके बीच बातचीत के बीच में, जितने मित्र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे समाज में एक रूपता, समाज में समानता का भाव लाना, सामाजिक समरसता लाने लिए तीन लोगों को काम करना चाहिए। हर गांव के शमशान तो जाति मुक्त होने चाहिए, मृत्यु के बाद भी कोई जाति रहती होगी किसी की मैं तो समझता नहीं, इस बारे में नए सिरे से सबको सोचना चाहिए। जहां जातियों के अनुसार शमशान घाट हैं, एक गांव में कई शमशान घाट तो चलो हो सकता है बड़ा गांव हो, लेकिन शमशान घाट में आने वाले मुर्दे को भी जाति के अनुसार जलाया जाए, अगर ये स्थिति अभी भी बहुत सारे गांव में बची हुई है तो ये हमारे लिए कोई बहुत उत्साहजनक बात नहीं है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और इस सिलसिले को खत्म करना चाहिए। आइए मिलकर हरियाणा में हम ये अभियान चलाएं कि हरियाणा में शमशान घाट के मामले में, जल के स्थान के मामले में, पहले तो कुएं हुआ करते थे ना, कुएं भी यही समस्या थी, जब हम छोटे बच्चे थे गांव में जातियों के अनुसार कुएं थे, ये हरिजनों का कुआं है, ये ब्राह्मणों का कुआं है, ये राजपूतों का कुआं है, हमारे देखते देखते कुएं तो समाप्त, और जल जो है एक ही स्रोत से आता है, तो जल घर से आता है, नल से आता है, तो जहां कुएं भी हैं मान लिए या जल स्रोत और भी हैं उनसे जाति का नाम निपटना चाहते साहब, और धर्मस्थल, शमशान घाट और जल के
4: सर के साथ।
2: जी मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का इशू
4: सर के साथ थोड़ा नेटवर्क इशू है। हाँ जिंदगी से दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे
2: जी, जिंदगी तो
4: तब तक एक क्वेश्चन मैं सरपंच साहब से कर लेता हूँ।
2: जी जी
4: प्लीज, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, सर के साथ थोड़ा नेटवर्क इशू है, आप भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं आप, या तो मैं एक सवाल कर लेता हूँ फिर आप अपनी बात रख
2: दीजिए। जी प्लीज सर।
4: सरपंच साहब, हम आपसे सफाई व्यवस्था को लेकर बात करना चाहेंगे। हमने देखा है कि ग्राम पंचायतों में ना, हमारी हरियाणा सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों में हरियाणा सरकार की तरफ से आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, और आपके पास दो ग्राम पंचायतें हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी दो ग्राम पंचायतें हैं उसमें सफाई की क्या व्यवस्था है, दोनों ग्राम पंचायतों में कितने सफाई कर्मचारी हम लोगों ने लगा रखे हैं, और सफाई कर्मचारी जो लगा रखे हैं तो वो सफाई की जो व्यवस्था है उसे हम दोनों गांवों में कैसे मेंटेन करते हैं। मेंटेन का मतलब कि इस हफ्ते, इस मोहल्ले, इस परिवार या इस समाज के लोगों का सफाई अभियान होगा, और दूसरा सफाई अभियान की अगर हम बात करें तो आपकी ग्राम पंचायत के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, आपके लोगों के बारे में जानना चाहेंगे कि वो सफाई अभियान में कितना अपना सहयोग करते हैं, गांव में सूखा कचरा, गीले कचरे की गाड़ियां हैं नहीं है, तो सफाई के बारे में हम थोड़ा बात करना चाहेंगे।
1: जी सर, अब जैसे सर मेरे पास दो गांव हैं, तो मेरे पास सफाई कर्मचारी भी दो ही हैं। मेरा जो ज्यादा आबादी है वो भीलचप्पर में पड़ती है, और कम आबादी वाला मेरा जो गांव है वो आमबोला है, तो उसमें मैंने क्या किया है सर, एक जो सफाई कर्मचारी है वो परमानेंटली 7 दिन में से 6 दिन जो है फील्ड छप्पर में काम करता है, सफाई करता है, और दूसरे वाला जो है वो 5 दिन वहां काम करता है और 1 दिन के लिए हमारे यहाँ भील छप्पर में ही दूसरे सफाई कर्मचारी का हाथ बटवाता है। लेकिन उसके बाद भी सर बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए या तो मजदूर का प्रबंध किया जाता है, जैसे अब सर मौसम आ रहा है बरसात का, नाले भी साफ करने थे, और आपने देखा होगा आजकल के दिनों में जो है ये घास फूस ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए ग्राम पंचायत जो है एक मजदूर या 2 मजदूर लगाकर जो है उनकी सहायता के लिए जो है उनको पास छोड़ती है और उनको उनसे सफाई का काम करवाते हैं। लेकिन 90% जो है हमारे सफाई कर्मचारी ही अपना जो है अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव का शेष कर ध्यान रखते हैं। सर
4: गांव के लोग सर इस सफाई अभियान में कितना आपका सहयोग करते हैं? ग्राम पंचायत के पास सूखा कचरा और गीले कचरे वाली गाड़ी जो है वो उपलब्ध है या नहीं है?
1: नहीं है सर।
4: और गांवों में जैसे सर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, कूड़े के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं या फिर कचरे के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके लिए ग्राम पंचायत ने क्या व्यवस्था कर रखी है? वहां कोई ग्राम पंचायत की जगह हो जहां उसको जाकर हम डंप कर रहे हैं या फिर नष्ट कर रहे हैं या फिर हम उसे जला रहे हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करना चाहेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन भी इसमें है और स्वच्छता अभियान की अगर हम बात करें तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो सारे ही स्टेट की हम बात करें और सारे डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, जनप्रतिनिधियों की हम बात करें, उनका सख्त संदेश है कि वे स्वच्छता पर काम किया जाए।
1: देखिए सर गांव में इतनी फैसिलिटी तो हम नहीं कह सकते कि हमारे पास कचरा सेड बना हुआ है
4: जी,
1: लेकिन गांव की जो वेस्टेज घर से बाहर निकलती है, जो पॉलिथीन निकलती है, जो वेस्ट पेपर निकलता है या वो रुपी गंदगी निकलती है, तो उसके लिए सफाई कर्मचारी जो है उसको कलेक्ट करता है, जैसे जैसे जिस गली में वो जाता है, जिस गांव घर में मतलब हो जाता है, तो वहां से कलेक्ट करके अपनी जो उसको साधन दे रखा है हमने, रेडी दे रखी है, उसमें लेकर जो है कहीं दूर के स्थान पे हमने एक स्थान बनाया हुआ है कचरा के लिए, तो वहां डालकर आता है सर। और अगर गांव की रिस्पॉन्सिव की बात करें तो गांव में तो सर किसी को कोई सफाई से मतलब होता ही नहीं, इतना ही समझा लो। अब सर पानी की बात करें तो पानी के लिए हम लोगों को बार बार रेयर करते हैं कि भाई वेस्ट ना करो, पानी वेस्ट ना करो, तो यही बात जो है गंदगी के लिए भी है सर। अब गांव में ये हो जाता है कि सफाई कर्मचारी आएगा, अपने आप उठाएगा और लेके जाएगा, चाहे उसको 2 दिन या 3 दिन हो जाते हैं सर। तो मैं ये कहूँ कि गांव की तरफ से तो कोई ऐसा मुहिम दे या कोई ऐसी देखने को नहीं मिलता कि वो जो है हमारे को कोऑपरेट करते हैं, पंचायत को कोऑपरेट करते हैं, तो ये तो सारी जिम्मेदारी है पंचायत के ऊपर ही डाल दी गई है।
0: इसमें संजीव भाई ये बताओ, ये कचरा जो आप इकट्ठा करते हो कहाँ जाता है?
1: ये सर एक स्थान बना हुआ है सर, हमने वहां डालते हैं सर, उसमें गड्ढा बनाया हुआ है सर।
0: अच्छा, और वो पंचायती जमीन में है?
1: जी सर।
0: आपके पास पंचायती जमीन कितनी है?
1: सर पंचायती जमीन तो हमारे पास कागजों में तो है 85 किले हैं सर।
0: और बिना कागजों के?
1: बिना कागजों में सर ऐसा है, वो कुछ खाड़ा नाला और सरस्वती का रकबा पड़ता है सर मेरे पास दोनों गांव। अच्छा। में तो उसमें कुछ जमीन जो है वो उसमें खाड़ा नाला में चली जाती है सर, मतलब जो है वो पीछे से जैसे सरस्वती हमारी आदिबद्री से चली आ रही है और कपाल मोचन से गुजरती हुई हमारे गांव से गुजरती हुई यहाँ निकलती है, तो वो कुछ रकबा सर उसमें चला जाता है, 80-85 किलो में से ही जाता है सर वो।
0: तो कुल मिला के आपको अपनी जमीन से कितनी आमदनी होती है? अपनी आमदनी कितनी है पंचायत की ऑन सोर्स?
1: आमदनी सर कुछ नहीं है पंचायत की, 0 है सर।
0: ये 85 किले में था रुपये कुछ नहीं आमदनी छन्नी भी
1: सर? इन्होंने केस डाला हुआ है जिनके पास अटैचमेंट हुई है, तो ये केस सर पेंडिंग पड़ा है अभी कोर्ट में डाला हुआ है उन्होंने, तो हम भी उसमें सर कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
0: कौन सी कोर्ट में किस लेवल पर पेंडिंग है
1: ये सर? कमिश्नर लेवल पे पेंडिंग है सर।
0: पैरवी हो रही है उसकी कोई?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: कर कबूल रहे के?
1: नहीं नहीं सर, कर किया हमने।
0: नहीं कोर्ट केस आपने किया है कि दूसरे पक्ष ने किया है?
1: मेरे से पहले ही चल रहा है सर, पिछली पंचायत के टाइम से।
2: वीरेंद्र सर आपका जो
0: प्रश्न, मेरा सवाल दूसरा है
2: जी, मेरा आपका जो प्रश्न आपने
0: पहले एनक्रोचमेंट हटाने के लिए आपने केस किया है कि एनक्रोचमेंट को न छेड़ा जाए?
1: हाँ जी सर।
2: वीरेंद्र सर आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है, मैं सरपंच जी से पूछूंगा।
0: जी भैरव जी, आपको
2: जी वीरेंद्र सर आपने जो पहले प्रश्न किया था,
0: भैरव जी आवाज आ रही है?
2: जी जी आ रही है, बीच में रुक गई थी। और आपने जो प्रश्न किया था सरपंच जी से, उसका उत्तर अभी नहीं आया। जो आपने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि हर गांव में ये स्थिति बदले, जैसे मैं अंबाला छावनी की बात करूंगा, तो यहाँ तो मुख्य तौर पर एक ही रामबाग है जहां पर ज्यादातर लोगों का संस्कार होता है। तो आपने जो प्रश्न किया था सरपंच जी से, उसका अभी उत्तर नहीं आया। मैं याद कराऊंगा सरपंच जी को, उसका उत्तर दें। जी
1: जी सर, आपने सवाल किया था कि शमशान घाट दो है या एक है?
2: जी
1: तो उसमें है सर,
0: गाँव के शमशान एक हो सकते हैं,
1: जगह एक है सर, लेकिन नंबर दो है सर, अलग अलग कटा हुआ है।
2: क्या आने वाले दिनों में वो एक दोनों ही नंबर है
1: सर? ये तो अपने आप जो वीरेंद्र सर ने जो है बात की है कि मुहिम चलाई जाए कि वो दोनों एक हो सकते हैं, तो हमारा तो प्रयास सर ये रहेगा कि हम दोनों को ही एक करें और वो जातिगत ना हो
2: जी,
1: सभी गाँव के लिए एक समान हो, कोई भी उसमें जाए अपना जो है संस्कार करे।
2: जी चलिए, अभी बात का सिलसिला आगे चलाएंगे।
0: आप ये कह रहे हो ना कि अलग अलग किला नंबर में कटे हुए और एक साथ हैं, यही कह रहे होंगे?
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर।
2: जी वीरेंद्र सर,
0: गुरविंदर जी आप कुछ पूछना चाहेंगे क्या इनसे, शास्त्री जी से, गुरविंदर जी से? गुरविंदर जी को पूछना चाहिए अगला सवाल, सुन पा रहे हो गुरविंदर जी?
3: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। सरपंच साहब, जैसे आप साफ सफाई के बारे में बोल रहे हैं, एक ग्राम पंचायत लेवल पे एक कमेटी बनी होती है स्वास्थ्य के लिए, क्या आपके गांव में वो कमेटी बनी है?
1: नहीं है सर।
3: नहीं, वो काम भी कर रही है या कागजों में ही है?
1: सर वो कागजों में ही है, बट काम कुम तो सर सरपंच के ऊपर ही छोड़ देते हैं सर सारा।
3: नहीं, उस चीज को अगर एक्टिवेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको?
1: सर ग्राम सभा में बुलाते हैं सर हम उनको, जो सर ग्राम सभा जो होती है जब उनमें हम सब कमेटियों को बुलाते हैं, चाहे वो पानी से संबंधित कमेटी है, चाहे वो सफाई से संबंधित कमेटी है, तो उसमें बुलाते हैं सर उनको।
3: जो लोग पानी की वेस्टेज करते हैं या साफ सफाई नहीं रखते हैं, उनको वो कमेटी कोई एक्शन लेती है कि नहीं लेती है?
1: कोई नहीं सर एक्शन लेता, एक्शन कोई नहीं लेता सर, सरपंच कोई बोलते हैं कि आप ही करो जो भी करना है।
3: अच्छा, और जो एक स्कूल प्रबंधन कमेटी होती है उसका क्या रोल होता है?
0: गुरविंदर सिंह रुकिए, गुरविंदर जी रुको यार, जो ये आपने कह के अपना काम सा नबेड़ दिया शास्त्री जी, कि भाई कोई नहीं काम करता, कोई काम नहीं करता, कोई कमेटी काम नहीं करती, सब सरपंच पे डाल देते हैं, ये हकीकत हो सकती है, होगी, लेकिन क्या आपने कभी इस हकीकत को बदलने के बारे में सोचा सरपंच साहब?
1: नहीं सर, ये नहीं कह सकते कि मैंने इस पे कोई कार्रवाई की है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने कार्रवाई की है इस पे सर।
0: अच्छा, कुल मिला के पीने के पानी की गुणवत्ता का क्या दृश्य है आपके यहाँ?
1: वो सही चल रहा है सर, उसमें कभी दिक्कत आई नहीं सर। अब
0: अभी सैंपल डलवा रहे हैं सर, सैंपल सैंपल सैंपल चेक कराए आपने अपने पानी के?
1: करा रखे हैं सर, सैंपल चेक किए थे डिपार्टमेंट की तरफ से, हुए थे सर।
0: कब आखिरी बार? कब?
1: 2 महीने पहले सर।
0: चलिए, नियमित रूप से ये काम होना चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी नाम की एक चीज होती है।
1: हाँ जी, सर
0: आपके यहाँ है क्या, कभी बैठक होती है उसकी?
1: बना रखी है सर वो भी।
0: आखिरी बैठक याद करिए, आखिरी बैठक विद्यालय प्रबंधन समिति की कब हुई थी, जिसमें आप स्वयं साक्षात उपस्थित थे, और उसमें एजेंडा किस किस तरह का आता है, कैसी बातें करते हैं लोग उसमें बैठ के?
1: ये सर मार्च के लास्ट में की थी हमने। और तो दरअसल हमारा एक अध्यापक था वहां सर, वो उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी डेथ होने के बाद जो है बच्चों को पढ़ाने की समस्या आ रही थी।
0: अच्छा,
1: तो एक अध्यापक हमारा रहता है वहां, जो लेडी टीचर थी, हमने उससे बात की, वो कहती है कि सर मेरे को बच्चे पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, इसके लिए कोई समाधान किया जाए। तो हमने गांव की तरफ से ही एक लेडीज को हायर किया था सर, कि जब तक कोई टीचर परमानेंट यहाँ नहीं आता तब तक ये लेडीज जो है आपकी सहायता करेगी और बच्चों को पढ़ाएगी भी। उसका जो खर्चा था सर वो हमने अपने ऊपर ही ले लिया था, कि सरकार की तरफ से कुछ मिले ना मिले, बच्चों का भविष्य या बच्चों की पढ़ाई नहीं खराब होनी चाहिए, तो उसका जो भी लेन देन था सर वो हम अपनी पंचायत की तरफ से करते थे। उसमें हमने 3-4 बंदों की कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने ही अब तक उनको चला रखा है और सरकार की जो है कृपा से जो है आज वहाँ नया टीचर अलॉट हो गया है और स्कूल जो है ठीक चल रहा है हमारा।
0: अच्छा, तो स्कूल में और कोई मसला नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है
1: सर? बाकी तो ठीक है, लाइट की समस्या थी वो ठीक करा दी थी और खाना बिल्कुल अच्छा बनता है सर हमारे यहाँ, बच्चे 40-50 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल है सर हमारा, तो बाकी तो कोई समस्या नहीं आई सर।
0: अच्छा, और आप तो क्योंकि यमुना आपके यहाँ
2: वीरेंद्र सर आपकी आवाज
0: हरियाली की तो कमी होगी नहीं, और यमुनानगर में मेरी आवाज ब्रेक होनी नहीं चाहिए वैसे, मैं ऐसा मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा।
2: ब्रेक हो रही है सर,
0: अभी
2: अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए सर। जी बोलिए सर।
0: गुप्ता जी को हेलो।
2: जी बोलिए सर, आपकी आवाज
0: अब आवाज आ रही है।
2: जी जी बोलिए सर।
0: मेरी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हरियाली वाला मामला तो आपके यहाँ ठीक होगा सरपंच साहब, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको भी गांव को हरा भरा रखने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने की जरूरत पड़ती है।
1: सर जैसे सरकार की मैं मंडल महामंत्री हूँ सर सरकार में, मंडल पाबनी से, तो सरकार की तरफ से अब हमारी मीटिंग हुई थी 2-3 दिन पहले ही, तो हमारा जो पर्यावरण दिवस आ रहा है 5 जून में, तो उसके मुहिम में हमने 100 पेड़ लगाने के लिए जो है अपना एक शपथ लिया है कि पूरे गांव पंचायत की तरफ से हम 100 पेड़ एक माँ के नाम पेड़ के नाम से जो है वो लगाने का हमने एक शपथ लिया, वो सर हम लगाएंगे। लेकिन हरियाली सर आपके कथानुसार बिल्कुल सही है सर, हमारे यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं लेकिन फिर भी हम जो है हर साल जो है नए पेड़ लगाते रहते हैं, जहाँ भी हमें जगह मिलती है, जोड़ के पास मिलती है या कहीं मिलती है तो हम पेड़ जरूर लगाते हैं सर।
0: चलिए, मैं मेरे साथ श्री मनमोहन गुप्ता मौनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी जिनको सम्मानित किया गया है, मेरे पुराने हम लोग एक साथ दैनिक ट्रिब्यून में काम करते रहे, मेरे सीनियर थे आप वहाँ, और कई सालों बाद गुप्ता जी से उनके निवास पर आज अनायास मिलना हुआ है। मुझे लगा भी गुप्ता जी को भी आज की महफिल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में हम राम राम हरियाणा में किसी न किसी गांव के सरपंच, कोई वहां के ग्राम सचिव, कभी कभी सरकार के किसी महकमे के अधिकारी, उनको जोड़ते हैं, और हरियाणा के विभिन्न कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस जो हैं, जिसमें मेरे गांव से चलने वाला रेडियो ग्रामोदय भी है, अंबाला से चलने वाला रेडियो वितस्ता, अंबाला तो आपका शहर है, आपका अपना शहर है, तो अंबाला का रेडियो वितस्ता, भारत जी सामने मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, अंबाला में कम्युनिटी रेडियो की जो तरंगे है ना, वो अंबाला वालों से ज्यादा बढ़िया ये कश्मीर वाले चला रहे हैं। भारत सोपोरी जी सोपोर के हैं। अच्छा। और लंबे समय तक LIC में आप रहे हैं, और इन्होंने अंततोगत्वा अंबाला को अपनी कर्मस्थली को ही वहां बसने के लिए चुना, और वहीं पर इन्होंने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाया जिसका नाम भी इन्होंने वितस्ता रखा, झेलम का नाम वितस्ता है शास्त्रीय नाम। आज के हमारे जो सरपंच मेहमान हैं उनसे चर्चा हम कर ही रहे थे, उसका कुछ हिस्सा आपने भी सुना होगा। आपको हरियाणा के किसी गांव में जाने का अंतिम बार मौका कब मिला, आपको कुछ याद आ रहा है?
5: मुझे अंबाला ही जाता रहता हूं मैं।
0: हाँ हाँ।
5: अंबाला के बहुत से गांव ऐसे हैं
0: जी,
5: जैसे आसपास से ढोरा भी है, अंबाला कैंट के पास जो गांव है छोटे
0: जी,
5: वहां भी जाते रहते हैं। मुझे तो बहुत चेंज नजर आया।
0: हाँ हाँ।
5: पहले और में बहुत परिवर्तन हुआ है, काफी सुधार भी हुआ है, एक लोगों में जो सोच है वो जरूर बदली है। पहले जो था छुआछूत ये वगैरह, अब बहुत मुझे नहीं नजर आ रहा।
0: हाँ नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि बदलाव आया, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन अभी बदलाव उतने वाला भी नहीं आया आदरणीय गुप्ता जी, जिसकी कल्पना हम कर रहे हैं। जैसे आज हम चर्चा कर रहे थे, भारत जी ने छेड़ दिया वो विषय, भारत जी मुझे अच्छा लगा, या जितेश जी ने छेड़ा था कि भाई मैंने एक दिन इसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, वो अक्सर कहते हैं कि समाज में समरसता स्थापित करने के लिए और बहुत सारे काम करने की जरूरत है, लेकिन कम से कम तीन काम पक्के तौर पर एक हो जाने चाहिए सारे समाज के। एक जो पीने के पानी का स्रोत है कुएं बावड़ी, वो एक हो जाए। शमशान घाट अंतिम यात्रा में जब जाएं तो अलग अलग जातियों के शमशान घाट में न जा रहे हों, और पूजा स्थल वहां पर भी ये ना हो कि अमुक जाति के व्यक्ति को आने देंगे, अमुक के को जाने नहीं देंगे, यानी भगवान के घर में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, अभी भी ऐसे आपको धर्मस्थल भी मिल जाएंगे ग्रामीण अंचल में जो हमने अलग अलग बिरादरियों के बना लिए हैं। एक बिरादरी वाले दूसरे के में नहीं जाते, दूसरे तीसरे के में नहीं जाते, और शमशान घाट में तो ये तो सबसे विभत्स बात तो मुझे शमशान घाट वाली ही लगती है। तो परिवर्तन आया भी है लेकिन अभी नहीं भी आया है। एक गांव है हमारे यहाँ दादूपुर, आर्य समाज का प्रभाव है उसमें, असंत विधानसभा का गांव है करनाल जिले का भारत जी, तो उस गांव में आर्य समाज का प्रभाव था तो उन्होंने इस बात को निपटा दिया। ये जातीय शमशान घाट नहीं है वहां पर, वहां शमशान घाट है। जी गुप्ता जी आप इस पर कुछ कहेंगे?
5: बिल्कुल ठीक बात है, आपकी जो सोच है शुरुआत ही बहुत अच्छी है, तो इसका बहुत ही बढ़िया परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा और लोगों में इसकी सोच अच्छी है। पहले जरूर होता था कि यहाँ इस जाति का उस जाति का, अब वो मैंने देखा है कि अब बहुत ही कम रह गए, और जैसा आप सोच रहे हैं और कर रहे हैं, सोचना अलग है करना अलग है, आप तो व्यक्तिगत रूप से इसमें इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: जी जितेश जी हाथ उठा रहे थे, जितेश जी हाथ उठा रहे हैं तो सवाल भी उठाइए। पलवल के रेडियो जितेश जी पूछना चाह रहे
2: हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, जितेश जी आप करिए
4: सर। धार्मिक सर बिल्कुल, मैं अपने पलवल जिले की बात करूंगा। पलवल, पलवल के पास हमारा फरीदाबाद है, इधर अगर हम जाएंगे नूह है,
2: आपकी भी आवाज रुक रही है जितेश जी। जितेश जी आपकी आवाज इस समय ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं पहुंच रही है यहाँ पर।
0: जितेश जी का सवाल बाद में ले लेंगे, आप अपना सवाल पूछ लीजिए।
2: सबसे पहले तो मैं मोनी जी को, जो आपने नाम इनका शॉर्ट नेम दिया, उसी से संबोधित करूंगा। मोनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आपने अंबाला से बात की। मेरे रगों में, जन्म तो मेरा कश्मीर में हुआ है पर मेरे रगों में तो अब हरियाणा का, और हरियाणा के प्रति ही अपनी जिम्मेदारी बनती है। पिछले 36 वर्षों से यहाँ पे हूँ, आपका स्वागत करूंगा। अगर आप कभी समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आ जाएं, हम यहाँ बैठ के बात भी करेंगे और आपको हम कहवा भी पिलाएंगे और कश्मीर भी ले जाएंगे आपको। खैर, और स्वागत आपका, मैं इंतजार करूंगा जब आपके पास समय होगा आप हमारे पास आएंगे।
0: मैं लेकिन एक शब्द पे आने दूंगा
2: जब वीरेंद्र सर साथ होंगे।
0: जो मुझे जो कहवा मुझे पिलाया था उससे अच्छे वाला नहीं पिलाना, वे वही वाला पिलाना।
2: सर मैं आपका भी अभिनंदन करूंगा, आप साथ ही आइए। अब हमारा रास्ता भी ओके हो गया, अब आप सीधा हमारी लोकेशन पर हमारे स्टूडियो तक पहुंच सकते हैं, अब कोई अवरुद्ध नहीं है, कोई बाधा नहीं है। मैं संजीव शास्त्री जी की ओर जाना चाहता हूं। संजीव जी आपने अपने गांव के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और आपका मैं साधुवाद आपको देता हूं, क्योंकि आपने कुछ सवालों के स्पष्ट जवाब दिए जो आपने बोला कि हाँ ये नहीं हुआ है। ज्यादातर तो लोग हम इधर उधर की बात करते हैं और सही उत्तर नहीं देते हैं। जो आपने कहा कागजों में है तो कागजों में है, धरातल पर नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आपके गाँव की तरक्की है, जो आपके गाँव की उन्नति है, क्या आपने कहीं भी अपने गाँव में या दोनों गाँव में कहीं उसको पटल पर दर्शाया है? क्या ग्राम जो जिसको हम सूचना पट बोलेंगे, क्या आपने ऐसी कोई जानकारी अपने गाँव में सभी लोगों के लिए ओपन कर रखी है कि आपने क्या क्या कार्य 2023 से किए हैं?
1: नहीं सर, हमें कोई सूचना पट तो नहीं लगाया, लेकिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही यदि कोई कार्य अपना होता है या होना होता है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही हम अपने कार्य डाल देते हैं कि इसी साल में ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे ऐसे ये कार्य किए गए हैं।
2: शास्त्री जी आपने बोला कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। अगर आपके गाँव में मैं आता हूँ तो मैं कैसे देख पाऊंगा कि आपके गाँव की उन्नति आपके आने के बाद क्या हुई या पहले के कंपेरिजन में क्या हुई है?
1: सर ये किया नहीं, लेकिन आपके सुझाव अनुसार ये सूचना पट जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये चीज हमने आज तक डिस्प्ले में लगाई नहीं सर, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसा सूचना पट ग्राम पंचायत में बनाया जाए जिस पर लिखा जाएगा कि पहले क्या कार्य नहीं थे और जो नहीं थे वो क्या करवाए गए हैं।
2: जी वीरेंद्र सर,
0: मैं यहाँ कर दिया, जिससे पहले जो दो पट, एक पट दो पट वहां होने चाहिए, उनका क्या हाल है फटाफट ये भी बता दीजिए। संजीव जी, जब ओम प्रकाश धनखड़ जी ग्रामीण विकास के और कृषि के मंत्री थे, पंचायत मंत्री थे, तो उस दौरान हरियाणा के हर ग्राम पंचायत में ग्राम गौरव पट बनाए गए थे और ग्राम गौरव पट पे प्रयास ये किया गया था कि उस गांव का काम किए हैं तो उनको गौरवमयी परिचय गांव का उसको मिल जाए। आपके गांव का गौरव पट बचा हुआ है या मिट गया या बना ही नहीं था, क्या सीन है उसका, क्या दृश्य है, पहले इसका जवाब दीजिए फिर एक और पट की बात करेंगे।
1: सर वो गौरव पट जो है सरकार के द्वारा बनाया गया था वो आज वो ऐसे कैसे ही खड़ा है और हमारी मौजूदा पंचायत के द्वारा उसकी रिपेयर भी कराई गई है ताकि वो खराब ना हो, उसके ऊपर सर पेंट भी कराया हमने जो जहां से।
0: अच्छा, अब वो शास्त्री जी की आवाज चली गई है और आज नेटवर्क हमें तंग कर रहा है खूब। भारत जी,
2: मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ सर।
0: शास्त्री जी, मुझे
2: मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, जब आप लोगों की कट कट के आवाज आती है तो मैं अपनी इमेजिनेशन से उस आवाज को पूरा कर देता हूँ, पर वो सिर्फ मेरे मन में ही रहती है, ना तो वो प्रसारित हो रही है और कोशिश करता हूँ कि मैं सर मैं अनुरोध करूंगा मोनी जी से कि वो कुछ अपने बारे में और अपने जो कार्य है उसके बारे में, कितना आसान है पत्रकारिता करना और कितना सरल और सुगम है। मोनी जी,
0: और यहाँ मेरा प्रश्न जोड़ दीजिए, क्योंकि मोनी जी का संबंध अम्बाला से है और फिर हमने जिस अखबार में इकट्ठे काम किया उस समूह का केंद्र भी कुछ समय अम्बाला रहा, तो हल्का फुल्का बहुत शॉर्ट अपने करियर के बारे में, पत्रकारिता में क्यों गए, पत्रकारिता और साहित्य में क्या क्या अर्जित किया, उसकी जानकारी देते देते कुछ अम्बाला के संस्मरण भी आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। मनमोहन जी
2: प्लीज। मनमोहन जी,
5: मुझे मेरी जो सिलेक्शन हुई थी शुरू में बैंक में,
0: जी
5: बैंक छोड़ के मैं ट्रिब्यून में आ गया, उपसंपादक था, लिखने का शौक था, तो अब और तब के पत्रकारिता में बहुत फर्क आ गया। तब ये मोबाइल का जमाना नहीं था, एक एक खबर को करने के लिए हमें बहुत बहुत तीन तीन चार चार घंटे लगाना पड़ जाता था। अब तो बहुत इजी हो गया, एआई का जमाना भी आ गया, कई चीज हेडिंग बना रहा है वो, तब तो अब में बहुत फर्क है। तब लोगों से पर्सनल इक्वेशन बहुत थी, मुलाकात होनी, ये होनी। अब वीरेंद्र जी से हमारा देखो, रोहतक जाके हम इनसे मिला करते थे, खबरें रात को एक एक बजे इनको फोन करते थे, अब वो कहाँ रह गया। अब तो बहुत अच्छा सा टाइम है, आराम से मजे कर रहे हैं, तब बड़ी दिक्कत भी होती थी।
0: जब आपने पत्रकारिता की, जब आप उपसंपादक बने मोनी जी, उस समय का उपसंपादक, और अब जब आप सेवानिवृत्त हो गए, आज का जो न्यूज रूम है उसमें कुछ चीजें गायब हो गई। जैसे उदाहरण के तौर पे, आज अगर कोई गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का या अंबाला के किसी विश्वविद्यालय का पत्रकारिता पढ़ने वाला विद्यार्थी एमए जर्नलिज्म करके, एमएससी जर्नलिज्म करके वो नौकरी करने जाएगा ना और वो डेस्क पे सेलेक्ट हो जाएगा, तो वहां पे उसको वो देखने को नहीं मिलेंगी कुछ चीजें, उनको याद करते हैं आज। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं, मुझे कोई चीज याद आ रही, फिर आप बताना एक दो चीजें जो आपके टाइम में थी और अब नहीं है, नई पीढ़ी को देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे जब हम लोग डेस्क पर थे, मैंने भी अपनी शुरुआत डेस्क से की, बाद में मैं रिपोर्टिंग में फील्ड में चला गया, लेकिन प्रूफ रीडर बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है और कड़ी हुआ करता था। लेकिन क्या अब अखबार के दफ्तर में प्रूफ रीडर नाम के का बंदा है, और प्रूफ रीडर होता क्या है ये भी नहीं नई पीढ़ी को तो पता होगा, आप क्या कहते हैं इस पे?
5: बिल्कुल, अब तो बात ही ये नहीं, ये डेजिग्नेशन ही लगभग खत्म हो गया
0: जी।
5: पहले पृष्ठ सामने आते थे, उसकी कंपोजिंग होती थी, एक आदमी हाथ में लेकर बैठता है, दूसरा उसको करेक्शन करता था, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, खुद ही देखा पड़ा
2: जी, डिजिटल हो गया है, जी डिजिटल हो गया है, और आज तो उस हिसाब से मुन जी मैं एक बात
5: अपना, भी उसी में
2: मैं अपना एक अनुभव कहना चाहता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ट्रिब्यून का ऑफिस म्यूनिसिपल कमेटी के आसपास होता था और मुझे याद है कि मैं 1991 से अंबाला में हूँ और जब हमें किसी काम कारणवश ट्रिब्यून ऑफिस में जाना पड़ता था तो बहुत साफ सुथरे ढंग से जाना पड़ता था क्योंकि अंग्रेजी अखबार था और बहुत सारे अप टू डेट लोग होते थे। बाकी दफ्तरों में तो हम जाते थे पर ट्रिब्यून में एक लेवल बनाया हुआ था। तो क्या वो लेवल आज भी वैसा ही है? क्या वो लेवल आज भी ऐसा ही है? और आज तो हम प्रधान जी जी जी मैं ये जानना चाहता हूँ।
5: नहीं देखिए चेंजेस तो दूसरे हो गए यार। पहले तो ऑफिस भी और तरह के थे, प्रूफ रीडिंग के लिए अलग था, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, हर के हाथ सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है,
2: मल्टीटास्क
5: ऑनलाइन आ रहा है। पहले तो हाँ पहले तो एक मशीन होती थी उसमें से प्रिंट निकला करते थे, उसको पढ़ा करते थे, अब वो जमाना नहीं रहा, अब तो सीधा ऑनलाइन का व्हाट्सएप का जमाना है, फोन पे बात की एकदम पहुंच गई खबर। पहले ऑफिस जाते थे पेन से लिखते थे, फिर टाइप होता था, लंबा चौड़ा काम था, अब वो नहीं रहा भाई।
2: चलिए आज की सर डिस्कशन की ओर चलते हैं। मैं एक मिनट मैं मोनी जी से एक और प्रश्न करना चाहूंगा फिर हम अपने विषय पर आ जाएंगे। मोनी जी आप मुझे ये बताएं कि कम्युनिटी रेडियो और प्रिंट मीडिया इन दोनों का क्या कोई रिश्ता है या कोई लड़ाई है?
5: लड़ाई वाली तो बात नहीं है। कम्युनिटी रेडियो में एक फायदा यह है कि बहुत नजदीक की खबरें मिल जाती हैं। अब प्रिंट मीडिया में कई बातें नहीं आ पाती जो बात आप कर रहे हैं गांव की, छोटी छोटी सी बातें जो कि लोग गांव के हैं वो उसको बहुत पसंद करेंगे। तो ये है कि इसकी आपने कैसे पहुंच लोगों तक पहुंचानी है वो होनी थोड़ी मुश्किल लगती है मुझे कभी कभी, इसके आम जनता तक ये जरूरी है।
2: मेरे स्टूडियो में
5: सोशल मीडिया में पहुंचा
2: जी जी सर, मेरे स्टूडियो में एक प्रतिनिधि आए थे एक समाचार पत्र के, तो मैंने उनको ये बोला आप में और हमारे में डिफरेंस ये है कि अगर अंबाला में कोई घटना घटती है आप आज उसको कलेक्ट करेंगे डेस्क रूम में, आप उसको तैयार करेंगे और अगले दिन छाप के लोगों तक पहुंचाएंगे। हम तो एक फीडर अप करके अभी से अभी लाइव लोगों तक वो जानकारी पहुंचाएंगे, तो वो मान गए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पर कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया में कम्युनिटी रेडियो को जगह नहीं मिल पाती है, ये मेरे मन में एक बहुत बड़ी बात है। जब से हम अंबाला में पिछले 3 साल से तो सामुदायिक रेडियो और पिछले 8 साल से वेब रेडियो है और वेब रेडियो या रेडियो वितस्ता को आज तक ज्यादातर प्रिंट मीडिया में कोई जगह नहीं मिली है। वीरेंद्र सर प्लीज आगे प्रोग्राम में कुछ समय रहा है आप प्लीज बताइए।
0: मुझे इस विषय पे आना पड़ेगा। भारत जी कभी कभी ना कभी कभी युक्ति से हम बहुत जगह ले सकते हैं। मैं अपना अनुभव बता दूं, विषय बदल गया
2: जी।
0: शास्त्री जी आप सुनेंगे कम्युनिटी रेडियो की और अखबार की बात भी हो जानी चाहिए कभी कभी कम्युनिटी रेडियो पे। हमने जब रेडियो सिरसा शुरू किया, हरियाणा के किसी विश्वविद्यालय का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो सिरसा था, सौभाग्य से जिसका संस्थापक निदेशक मैं था, पत्रकारिता विभाग का मैं वहां अध्यक्ष भी था। तो हमने जितना स्पेस कम्युनिटी रेडियो के लिए अखबार में पाया साहब, हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में ना मिला हो।
2: वेरी गुड।
0: वो मैं इस तरह यूं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हम कम्युनिटी रेडियो पर जो कार्यक्रम करते थे, एक हमारा कार्यक्रम वहां चलता था भारत जी, जैसे अभी हम राम राम हरियाणा करें उस कार्यक्रम का नाम था हेलो सिरसा
2: जी।
0: और हेलो सिरसा में कोई ना कोई मेहमान खास उसमें आता था हर दिन, और जो मेहमान आता था उसको मैं इंटरव्यू करता ऑन एयर, जैसे अभी फोन इन प्रोग्राम भी होता था, उससे वहां के श्रोता भी सवाल पूछते, हमारे पत्रकारिता के विद्यार्थी भी सवाल पूछते। और जब वो कार्यक्रम 1 घंटे का हेलो सिरसा समाप्त हो जाता था तो पत्रकारिता का 1, 2 या 3 को पत्रकारिता के विद्यार्थी उनकी ड्यूटी लगी होती थी, वो उस सारी स्क्रिप्ट को यानी उस सारे कार्यक्रम को सुनते थे, साथ साथ भी सुन रहे होते थे, बाद में भी ऑडियो निकाल के सुनते थे और उसके आधार पर एक प्रेस विज्ञप्ति बनाते। हम अपने रेडियो के हेलो सिरसा कार्यक्रम की लगभग हर दिन प्रेस रिलीज सिरसा में जारी किया करते थे और अंग्रेजी ट्रिब्यून सहित अधिकांश अखबारों में महीनों तक, जब तक हम उस प्रयोग को कर रहे थे, हमें कभी कभी तो हर दिन स्पेस मिलता था। कभी कभी ट्रिब्यून का अंग्रेजी वाले ट्रिब्यून का, द ट्रिब्यून का जो पुल आउट शुरू हुआ था उसमें स्पेस भी होता था, कभी कभी 4-5 कॉलम इतना स्पेस भी हम उसमें लेते थे फोटो सहित। मुझे आज भी याद आता है एक बार जनरल वीके सिंह आए हमारे यहाँ कार्यक्रम में, हमारी खबर छपी, मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जो मेहमान आता था लोकल हो या बाहर से आए उसको हम इंटरव्यू करते थे हेलो सिरसा में, और फिर उसकी फोटो सहित खबर छपती थी। अपन अब अंबाला में ये प्रयोग नए सिरे से शुरू करें, हम लोग यहाँ रेडियो ग्रामोदय की भी खबरें यदा कदा देते हैं अखबार में, और हाँ सिरसा जितनी नहीं छपती लेकिन छपती हैं और छपनी चाहिए। इसकी युक्ति पर हम किसी दिन चलेंगे, कार्यक्रम का आखिरी
2: मैं चाहूंगा अंबाला में भी ऐसा हो और हम अपने विषय पे आ जाएं, क्योंकि आखिरी कुछ लम्हे बचे हैं और लम्हों में ही सारा सार होता है। प्लीज सर
0: संजीव जी, बस ये बताइए चलते चलते 1.5 साल का कार्यकाल आपके इस टर्म का रह गया, क्या चाहते हैं अपने गांव में क्या हो जाए, मजा आ जाएगा, ये कर दिया तो जीसा आ जाएगा, गांव वाले भी राजी मैं भी राजी।
1: मैं माननीय वीरेंद्र चौहान जी से अपने गांव के लिए एक स्टेडियम के लिए गुहार लगाता हूं कि वो हमारे ऊपर हमारे गांव के ऊपर कृपा करें और एक स्टेडियम बच्चों के खेलने के लिए हमें एक उपहार के रूप में दें।
0: योगशाला है आपके यहाँ?
1: नहीं सर।
0: पुस्तकालय?
1: पुस्तकालय के लिए सर अभी कल जी साहब के द्वारा पूछा गया था, मेरे ख्याल से उन्होंने सर भेज दिया है लिख के कि गांव में पुस्तकालय भेजी जाए, पुस्तकालय बनाया जाए।
0: भवन है आपके पास कोई पुराना कोई कम्युनिटी हॉल टाइप जिसमें उसको बनाया जा सकता है?
1: भवन है सर मेरे पास।
0: हाँ तो एक बार चेक कराइएगा उन्होंने किस कौन से भवन का प्रस्ताव भेजा है, और जो प्रस्ताव भेजा है एक बार मुझे भी दीजिएगा। जहां तक स्टेडियम का सवाल है, मुझे लगता है कि जितनी आपके गांव की आबादी है, पहले तो जमीन की बात, ये जमीन कितनी आपके पास देने के लिए, स्टेडियम के लिए जमीन है?
1: सर 4 किले दे देंगे हम सर स्टेडियम के लिए, 4 एकड़ सर।
0: चलो आप जमीन देने की तैयारी रखो। संसाधन अभी थोड़ा सा आर्थिक नियंत्रण चल रहा है सरकार में, आप महसूस कर ही रहे होंगे वैश्विक संकट के देखते हुए, लेकिन जैसे ही ये दरवाजे खुलते हैं तो वो जरूर आपके आपके गांव की पैरवी भी मैं जहां की जा सकती है मंत्री महोदय के सामने, विभागीय अधिकारियों के सामने निश्चित तौर पर करूंगा। स्टेडियम से पहले लेकिन मेरी निजी राय यह है कि पुस्तकालय बन जाना चाहिए, और अगर स्टेडियम भी ना होता दिखे तो आप लोगों को पहला प्रयास करना चाहिए कि आपके यहाँ योगशाला बन जाए। वैसे 4 एकड़ आप दे देंगे तो भी बन सकता है, भले ही वो चरणबद्ध ढंग से बने। और दूसरा एक अंत में, क्योंकि मिनट हमारे पास एक बचा है, कुछ भी करके आप अपनी जो जमीन आपकी कब्जे में पड़ी है, ये अवैध कब्जों में, इस जमीन को साफ छुड़वाइए, पैरवी करिए। हो सकता है पैरवी करने में आप भी संकोच इसलिए कर रहे हो, कोई अपना मित्र प्यारे भी दबे बैठे हो, यूं भी तो हो सके।
1: सही बात है सर,
0: पैरवी कर लीजिए, जमीन छुड़वा लीजिए, इस जमीन से जो आमदनी होगी फिर उसमें से भी हर साल आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर
2: जी। जीतेश जी,
0: मुझे लगता है
2: जीतेश जी आप बताइए आखिरी टिप्पणी आपकी क्या है, उसके बाद हम समापन करेंगे इसका।
4: बिल्कुल सर, समय की बहुत कमी हमारे पास है, 30 सेकंड बची हुए, तो चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग बाइंड अप करना चाहेंगे। सरपंच साहब, जैसे कि भारत जी ने एक बहुत अच्छी बात की और राम राम हरियाणा के माध्यम से हम और भी ग्राम को ये अपील और अनुरोध करना चाहेंगे, गांव में गांव जो सचिव है वहां पर सरपंच साहब अपने काम का लेने अपने कार्यकाल में ये अब तक कार्यकाल कराए हैं, भारत जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा सर, मैं अपने पलवल जिले की बात करना चाहूंगा, पलवल के पास हमारा फरीदाबाद है, नू है, हुडल है, हतीन है, सारी चीजें, तो जो हमारे शमशान की बात चल रही है, तो हमारे यहाँ पलवल में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें 2 शमशान है, और अगर 2 शमशान है तो सर वो आबादी के हिसाब से है कि भाई समझो कि ये आबादी इधर का शमशान अपना क्रियाक्रम करेगी, आबादी इधर अपना क्रियाक्रम करेगी, तो वहां पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वहां पर कोई ऐसी समाज के जो लोग हैं वो अपना कार्य क्रियाक्रम नहीं कर सकते, ओबीसी नहीं कर सकता, जनरल करेगा। बातें अगर हम देखें तो सर कुआ, तालाब, बावड़ी और मंदिरों में तो है डिफरेंस, नो डाउट सर, सारे हरियाणा में ही वो डिफरेंस है, बट शमशान की जो हम बात कर रहे हैं तो शमशान की स्थिति मुझे नहीं लगता कि मैं पिछले 8-10 साल से कम्युनिटी रेडियो के साथ काम कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता हमारे किसी भी पलवल के ऐसे गांव में ऐसी स्थिति है कि ये ऐसी समाज का शमशान घाट है, ये जनरल का है, ये ओबीसी का, ये बीसी का।
0: आइए हरियाणा करते हैं भारत जी, सारे मिलकर हरियाणा की तस्वीर इन 3 मामलों में बदलने का प्रयास किया जाए, शमशान, कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मस्थल, मंदिर, गुरुघर, वो सबके एक हों, इसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं, एक मुहिम जैसी भी हम चला सकते हैं। जी भरत जी,
2: जी मैं आखिर में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, सबसे पहले तो आपका, और आपने आज हमें मौनी से रूबरू कराया और आज हमारे दर्शन हुए इनके, और साथ में मैं आज के जो मेहमान ग्राम पंचायत बील छप्पर से हमारे पास शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाक अपनी बात रखी और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं और उनके तक आपने बात पहुंचाई। और जितेश जी आपका और गुरविंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को मेरी ओर से राम राम हरियाणा।
1: प्रणाम।
0: राम राम।
1: प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your

रेडियो विद स्टार 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विद स्टार। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा।

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: पंचमहल एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आधारित है पार्श्व गायक सुमन कल्याणपुर पर। प्रस्तुत करेंगे आरजे किडनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 FM मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। पेश है कार्यक्रम सुनहरी पल। सभी दोस्तों को किरनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आवाज की जिसे सुनते ही दिल में एक सुकून महसूस होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी की। उन्होंने अपने सुरीले गानों से हमेशा हमें बहलाया है और आज हम उनके सफर को सुरों के जरिए याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके जीवन के पहले पड़ाव से।

सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका बांग्लादेश तब पूर्वी बंगाल में हुआ था। वह बाद में अपने परिवार के साथ मुंबई चली आई जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही सुमन को संगीत का शौक था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और शंकर राव सुप्रे और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से संगीत का गहन अध्ययन किया। 1954 में सुमन ने अपनी गायन करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी मंगू और पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल था, जिसके बाद उनकी पहचान बनी।

सुमन की आवाज को मधुरता और शुद्धता के लिए जाना जाता है। उनकी आवाज को लता मंगेशकर के सम्मान माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई हिट गाने दिए, जैसे न तुम हमें जानो, दिल एक मंदिर है और तुमसे ही हसी मुलाकात हो गई। इन गीतों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। सुमन को अक्सर लता मंगेशकर के साथ तुलना की जाती थी। उनके गायन का तरीका और आवाज की टोन लता जी के सम्मान थी, जिससे उन्हें दूसरी लता भी कहा गया। सुमन ने एसडी बर्मन, नौशाद, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। उनके साथ की गई संगीत रचनाएं आज भी सराही जाती है।

उनकी गायकी में एक सरलता और सहजता थी जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। सुमन ने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा।

सुमन कल्याणपुर का विवाह राम कल्याणपुर से हुआ था, जो कि एक व्यवसायी थी। वह अपने पारिवारिक जीवन और संगीत करियर के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रही। सुमन ने लगभग 4 दशकों तक हिंदी फिल्म संगीत में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी लोकप्रियता 1950 से 1970 के दशक में अपने चरम पर थी, लेकिन वे 1980 के दशक में भी गाती रही।

आप सुन रहे हैं 90.0 FM मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अभी जारी है कार्यक्रम सुनहरे बाल। 1980 के दशक में सुमन कल्याणपुर ने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपनी पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने लाइमलाइट से दूर एक शांत और साधारण जीवन चुना। फिल्मों के अलावा सुमन कल्याणपुर ने रेडियो पर भी कई कार्यक्रमों में भाग लिया और लाइव परफॉर्मेंस दी। वह संगीत कार्यक्रमों में अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रही।

सुमन कल्याणपुर ने अपने समकालीन गायकों के बीच भी सम्मान प्राप्त किया। उनकी सरलता और संगीत के प्रति समर्पण ने उन्हें संगीत जगत में एक आदरणीय स्थान दिलाया। उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहना पसंद किया और मुंबई में एक शांत जीवन बिता रही है। हाल के वर्षों में वे सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई दी है और ज्यादातर अपने परिवार के साथ समय बिताती है। उनके फैंस उन्हें आज भी उनकी मधुर आवाज और अविस्मरणीय गीतों के लिए याद करते हैं। सुमन कल्याणपुर को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। हालांकि उन्हें कई बार मुख्य धारा में उतनी पहचान नहीं मिली जितनी की हकदार थी, फिर भी संगीत प्रेमियों के दिलों में उनकी खास जगह है।

दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी के गाने आज भी हमारे दिलों में एक नया रंग भर देते हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो कभी पुरानी नहीं होती। उन्होंने अपने सुरों से हमेशा हमें प्रेरित किया, हमें प्यार सिखाया और जिंदगी की हर पल को खूबसूरत बनाया, चाहे वो उनके सोलो गाने हो या ड्यूट्स। उन्होंने हर तरह के गानों में अपनी छाप छोड़ी है। उनका सफर किताबों के पन्ने जैसा है, जिसमें हर पंक्ति एक याद है। आज के प्रोग्राम के माध्यम से हमने उनकी यादों को ताज़ा किया। आप सभी का शुक्रिया जो आपने अपने वक्त दिया और सुमन जी के सुरों का लुत्फ उठाया।

इसके साथ ही आज का ये खास प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए सुर के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुरीली यादों के साथ खुश रहिए। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आपने सुना पार्श्व गायक सुमन कल्याणपुर के ऊपर आधारित। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ 90.0 FM ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar Zindagi Ka.
2: Badhaye apna business, advertise kare FM 90.0 MHz, Radio Vitasta par aur paye anniversary discount. Der na kare aur abhi phone kare 70564-130-10 पर।
3: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता।

जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, कतरा कतरा बह जाए और तुम देखते रहो, सुलगते रहो, सिसकते रहो, मिटते रहो, फना होते रहो। आज थर थराती रही मेरी रूह, रूह से मिलकर, इसलिए गीली हुई मेरी आंखें बरसों

बिना है ये बहुत उदास, ये दिल लगता नहीं तुम्हारे बगैर, हम क्या करें। आज दिल में उमड़े हैं फिर से सोए हुए जज्बात, एक बस तुम्हें याद करके। दिल मासूम है, भटकता है, बहकता है और बे इंतहा तुम्हें याद करता है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही मेरे पतझर की वीरानी को दूर करने के लिए शायद तुम लौट आओगे। इस दिल का

इस कारवां में छूट गए मेरे अपने, अपने जो अब पराए हो गए। जीवन के पतझड़ के मौसम की तरह यूं ही गुजरता रहा। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी, अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी, अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे।

अक्सर लौट आती हो तुम शाम सहर मेरी दुनिया में, छू जाते हो मेरी उम्मीदों को, पिघल जाते हो मेरे साथ इस बर्फीले मौसम में, अपने जज्बात कई हादिसात लिए। तुम खुशबू हो, रंगी नूर हो, भीगते मौसम में भीगती बारिश का एहसास हो।

एहसास है जो अक्सर मेरी दहलीज पे दस्तक देकर यूं ही चला जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। मैं जानता हूं सर्द मौसम की ठंडी हवाएं तुम्हें छूकर मेरी गली से गुजरती हैं शब रोज। मेरी अनदेखी अनसुने इन रास्तों की पहचान अब कौन कराए, जबकि इन अंधेरी राहों पे चलते चलते मैं अपनी पहचान अब खो चुका हूं।

जी हाँ श्रोताओ, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं 24/7 और 35/6 days। ये सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आप सभी अंबाला वासियों के लिए काम कर रहा है। बात हम वो करते हैं जो रखती है आपसे सरोकार। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:02 और 33 सेकेंड। मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब समय हो चला है FM 90.0 MHz यानी आपके अपने रेडियो वितस्ता के आज के खूबसूरत सफर को यहीं थामने का। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के इस पहर तक आपका और हमारा साथ हमेशा की तरह बेहद खास रहा। आइए आज के विशेष दिन की बात करते हैं। आज पूरे विश्व में विश्व बाइसिकल डे मनाया जा रहा है, यानी विश्व साइकिल दिवस, अंग्रेजी में कहेंगे वर्ल्ड बाइसिकल डे। श्रोताओं, आज 3 जून है। आज का दिन पूरे भारत और विश्व में एक बेहद खास संदेश के साथ ये दिन मनाया गया, विश्व साइकिल दिवस। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित इस दिन का मकसद सिर्फ दो पहियों की एक सवारी को याद करना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ भविष्य की नींव रखना है। आइए विदा लेने से पहले आज के इस सबसे मुख्य और खास दिन के महत्व को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सेहत की चाबी यानी स्वस्थ जीवन शैली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत को भूलते जा रहे हैं। साइकिल चलाना एक बेहतरीन और मुकम्मल कसरत है। ये हमारे दिल को दुरुस्त रखती है और मांसपेशियों को मजबूत करती है और मानसिक तनाव को कम कर हमें एक सक्रिय यानी एक्टिव जीवन जीने की प्रेरणा देती है। नंबर 2, पर्यावरण की सुरक्षा, क्लीन एंड ग्रीन अर्थ। बढ़ती गाड़ियों और धुएं के बीच साइकिल एक ऐसा साधन है जो जीरो पोल्यूशन यानी शून्य प्रदूषण फैलाता है। अगर हम सब मिलकर हफ्ते में कम से कम एक दिन भी साइकिल का इस्तेमाल करें तो हम अपनी धरती मां को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और आखिरी, किफायती और सुलभ। साइकिल एक ऐसा साधन है जो समाज के हर वर्ग की पहुंच में है। ये ना सिर्फ ईंधन पेट्रोल डीजल का पैसा बचाती है, बल्कि भारी ट्रैफिक के बीच से भी आपको आसानी से निकाल ले जाती है। यानी इन सारी बातों को देख के आज का संदेश है, तो क्यों ना आज से हम एक छोटा सा संकल्प लें, सेहत और पर्यावरण के नाम हफ्ते में कम से कम एक चक्कर साइकिल के नाम। तो याद रखिए दोस्तों, आप कोशिश करिए, अगर आप किसी भी विषय पर, किसी भी बात पर, किसी भी सकारात्मक सोच पर बात करते हैं तो जरूर उसका फायदा आपको भी होता है, सभी को होता है, देश को होता है, पर्यावरण को होता है और हमारी जिंदगियों में खुशियां ले आता है। तो यह था आज का विषय, और चलते चलते आज की इस हसीन रात को आपके सुपुर्द करते हुए ये चंद लाइनें सिर्फ आपके लिए, हर रोज की तरह। तो आज की पंक्तियां यूं हैं, सफर की जो शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। सफर की जो शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखिए ए मुसाफिर, एक बार चलने का हौसला तो रख ए मुसाफिर, तुम जैसे नेक लोगों का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। जी हां, तुम जैसे नेक लोगों का तो रास्ते भी इंतजार करते रहते हैं। जी हां, यह था दोस्तों आज का विषय और आज की पंक्तियां।
जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं और बताता हूं हमारा नंबर जहां पर आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं, पर उससे पहले हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। शुक्रवार 5 जून से हम कार्यक्रम ला रहे हैं भगवद गीता जीवन का सार। हम एक लाइव शो करेंगे रेडियो वितस्ता FM 90.0 पर 5 जून को सुबह 11:30 बजे से, और इस कार्यक्रम को हम अपने फेसबुक पेज और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी लाइव करेंगे। यानी इस कार्यक्रम को आप अंबाला में और पूरे विश्व में रेडियो पर सुन सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक पेज पर भी आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा मकसद है कि जो हमारा धर्म ग्रंथ भगवद गीता जी हैं उसके बारे में हम बात करें, उसका सार हमारे जीवन का है, हम जाने कि वो हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है, किस तरीके से वो हमारे जीवन के हर मुश्किल, हर खुशी और हर सवाल का जवाब दे सकती है। इस कार्यक्रम में मैं होऊंगा इसका संचालक और मेरे साथ होंगे भास्कर दास जो जम्मू में गीता परिवार के संयोजक है, और साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, जो हमें इस ज्ञान के बारे में बताएंगे किस तरीके से हम भगवद गीता को सरल शब्दों में समझकर अपने जीवन का सार बना सकते हैं। तो कार्यक्रम का नाम रहेगा भगवद गीता जीवन का सार, 5 जून को सुबह 11:30 बजे से। तो आइए आपको कल का विवरण, कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 4 जून 2026 बृहस्पतिवार को हमारी सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर। वंदे मातरम से हम शुरुआत करते हैं, लाते हैं आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत, 7:05 पर फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम एपिसोड 2 पेश करेंगे नरेश शर्मा। 8:30 बजे सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 7 हाथ और साथ, इस कहानी को प्रस्तुत करेंगे आपके सामने आरजे शिवानी। 9:30 बजे रेट्रो हिट्स एपिसोड 15 पेश करेंगे आरजे किरनी, और 10:15 पर मिले जुले गीत शीर्षक होगा इंतजार। संगीत की सभा जारी रहेगी। 2 बजे बृहस्पतिवार को आप सुनते हैं साइबर अपराध के बारे में हमारे तैयार किए गए एपिसोड, कल होगा एपिसोड 3 जिसका शीर्षक होगा फेक जॉब्स, जो आपको सोशल मीडिया से देखने को मिलते हैं, उनके एडवर्टाइज इतने अच्छे होते हैं जो आपको मंत्रमुग्ध करते हैं पर उनमें सच्चाई बहुत कम होती है। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल, 7 बजे सुनहरे पल एपिसोड 9 आनंद बख्शी पर तैयार किया गया कार्यक्रम आपको सुनाएंगे कल शाम 7 बजे। 8:30 बजे कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा, कल की कड़ी है फिजा रिबर्थ। आप अपना फीडबैक हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इसी खूबसूरत एहसास और उम्मीद के साथ कि आपकी आने वाली सुबह बेहद खुशनुमा और सेहतमंद होगी, आप अपने रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करेंगे। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।